पहली किरण में कुछ तो खास होगा। सूरज की पहली किरण में बड़े से बड़ा अंधेरा भी इसे देखकर भाग जाता है। यकीन ना हो तो कभी उठकर देख लो पहली किरण के साथ। यकीन ना हो तो कभी उठकर देख लो पहली किरण के साथ। जीवन में गजब का आत्मविश्वास आता है। 5:30 हो चुके हैं। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, ये अलबेली प्यार की राहें। कहना तो बहुत आसान होता है कि निकलो अपनी समस्याओं से बाहर। कहना तो बहुत आसान होता है कि निकलो अपनी समस्याओं से बाहर। बेड़ियां पैरों में हो तो कोई भी तोड़ दे, बंधन दिलो दिमाग के तोड़ना इतना आसान नहीं होता। 5:42 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अलचित के साथ।

0: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ఎఫ్ఎం రెయిన్బో. రెయిన్బోతో జీవితం రంగులమయం. నిలయంలో సమయం 5:59 దాటి 55 సెకండ్లు. 6 గంటలకు హిందీలో వార్తా ముఖ్యాంశాలు, తదుపరి 6:05 ఆంగ్లంలో వార్తా ముఖ్యాంశాలు వింటారు.
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय

0: जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Keralam over victory in assembly elections. Addressing the party workers at the BJP headquarters in Delhi yesterday, Mr. Modi said the day heralds a new dawn for the nation.
1: Jai Parajay! लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM Rainbow 101.9

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में, जहां आज मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति लेकर आई हूं आपके लिए बहुत सारी बातें पी का पी में, यानी कि प्रीति के पिटारे में। पर उससे पहले आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूं, तहे दिल से आपका स्वागत करती हूं। आइए जल्दी से सवार हो जाइए अपने अपने फन एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में, ताकि हम यहां से कुछ समय के लिए, नहीं, कुछ ज़्यादा समय के लिए आप हम साथ रहने वाले हैं आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में। आगे बढ़ने से पहले एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए।
1: మీ సొంతింటి కల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్ తో మీ సొంతింటి కల ఇప్పుడు మరింత సులభం. ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటు కేవలం 7.20%, సులభమైన ఈఎంఐలు ప్రతి లక్షకు కేవలం 679 రూపాయల నుంచి ప్రారంభం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఈ రోజే మీ సమీపంలో ఉన్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ను సంప్రదించండి. మీ సొంతింటి కలకు బలమైన ఆర్థిక తోడ్పాటు.
0: और दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रेनबो एफएम 101.9 आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल पी का पी, यानी कि प्रीति के फिटाने में ज्ञानचंद जी का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, है ना। तो एक बार ना ज्ञानचंद जी ने पूछा कि अरे प्रीति, वो कौन सी पत्नियां होती हैं जो पतियों के इशारों पर नाचती हैं? वरना श्रीमती ज्ञानचंद जी जो है ना, वो तो कभी गाने पर भी नहीं नाचती है। मैंने कहा, ज्ञानचंद जी, उन्होंने शायद रेनबो एफएम नहीं सुना होगा, वरना रेनबो एफएम पर तो अच्छे अच्छे अपने अपने गानों पर थिरकना शुरू कर देते हैं ना। तो चलिए साथियों, आप भी यदि कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। स्टे ट्यून्ड, चलिए चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे।

तो साथियों, आप तैयार हैं लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए? क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पर ज्ञानचंद जी अपने बहुत सारे अनुभव बांटने वाले हैं, ऐसे उन्होंने मुझे बताया है। पर उनको अपने लाइफ में आप अपनाना है या नहीं अपनाना है, वो आपकी अपनी रिस्क पे, ओके ना? वरना कल आके मुझे मत कहिएगा कि ज्ञानचंद जी ने ऐसे कहा था। जो भी कहना है ज्ञानचंद जी के साथ अपना मैटर सेटल करने का। तो चलिए, अब सवेरे सवेरे के समय में आप फिट रहने के लिए बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन क्या रस्सी भी कूदते हैं? यदि हाँ साथियों, तो इसमें कोई शक नहीं है कि रस्सी कूद, जिसे आप स्किपिंग या रोप जंपिंग के नाम से भी जानते हैं, वो ना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ही किफायती तरीका है। परंतु ज्ञात रहे साथियों कि रस्सी सदैव खाली पेट ही कूदें, और जहां तक हो सके सवेरे का ही समय चुने, क्योंकि ये समय इस क्रिया के लिए अधिक लाभप्रद है, ऐसे मेरा नहीं बल्कि विशेषज्ञों का कहना है। इसके अलावा आप रस्सी कूदते समय वस्त्र चाहे जो भी पहने, पर वे खुले एवं आरामदायक हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट बता रहे हैं। और विशेषज्ञों की माने तो रस्सी कूदने से पहले कुछ हल्के व्यायाम भी कर लें, ताकि मांसपेशियों के कसाव में जो कसाव होता है, जो टेंशन होता है, वो कम हो और उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और वैसे हम तो चाहते ही कि हैं आप हमेशा ही फिट रहे, हिट रहे, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तभी तो आप अपने पसंदीदा गानों पर थिरक पाएंगे, है ना? तो चलिए, जब आप और हम

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours।
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब, आपके धड़कनों पर जीते आरजे प्रीति के साथ। और आगे बढ़ूं तो ना, ज्ञानचंद जी बता रहे हैं कि उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि ये पत्नियां जो होती हैं ना, वो अपने पति से पहले भोजन क्यों नहीं करती हैं। तो मैंने कहा कि भाई ज्ञानचंद जी, वो तो अपनी पत्नी मतलब जिनकी भी पत्नियां उनका प्यार है वो, इसीलिए। तो ज्ञानचंद जी ने कहा ऐसा नहीं है। तो मैंने पूछा कैसा है, तो इस पर बताया ज्ञानचंद जी क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब वैज्ञानिक जब भी कोई दवाई बनाते हैं ना, तो वो ना बंदरों पर परीक्षण करते हैं ना। अब आप समझ ही गए होंगे, खैर मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानचंद जी भी वही कहते हैं जो चिचा कहते थे कि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं ना। वैसे साथियों सवेरे का समय और ज्ञानचंद जी खाने की बात कर रहे हैं, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रस्सी कूदने के तुरंत बाद ना तो कुछ खाएं और ना ही कुछ पीना है, पानी या फिर अन्य पेय पदार्थ भी ना पिए। रस्सी कूदने और कुछ खाने या पीने के मध्य कम से कम जो है 15 से 20 मिनट का समय जो है अवश्य रखें। और हाँ, आपको रस्सी कूदते समय फंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रारंभ में रस्सी कूदने की गति धीमी ही श्रेयस्कर है, और शुरुआत में थोड़े समय के लिए ही रस्सी कूदें और फिर धीरे धीरे गति और सीमा बढ़ाएं, ताकि आप भी थके नहीं और निरंतरता भी बनाए रखिए। और यदि आपका पैशन ही है, तब भी आपको ऐसा मेंटेन करना चाहिए, ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है। जब बात पैशन की चल ही रही है, तो चलिए गीत भी पैशन का ही हो।

यस साथियों, तो आपने ट्यून किया रेन एफएम 101.9 पर और मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में आप हैं। और आज जो है बॉलीवुड के तानसेन कहे जाने वाले संगीतकार नौशाद अली साहब की पुण्यतिथि है। साथियों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 26 दिसंबर सन 1919 यानी कि 26 दिसंबर 1919 को जन्मे प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद अली साहब ना हिंदी सिनेमा के सुनहरे हस्ताक्षर थे। अपने शानदार क्लासिकल संगीत से उन्होंने बॉलीवुड को कई दिल छू लेने वाले गीत दिए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नौशाद का अर्थ जो है ना वो खुश या प्रसन्न होना होता है, और अपने गीतों से उन्होंने ये खुशी और प्रसन्नता ही बिखेरी है। ऐसे महान संगीतकार को उनकी पुण्यतिथि पर नमन है। नौशाद साहब 5 मई सन 2006 यानी कि 5th ऑफ मई 2006 को संगीत जगत को रोता बिलखता छोड़ गए थे। उनके जाने के बाद जो शून्य पैदा हुआ वो आज भी नहीं भर पाया है। हालांकि उन्होंने फिल्मों का सैकड़ा भी पार नहीं किया। जी हाँ साथियों, उन्होंने मात्र 67 फिल्में यानी कि 67 फिल्म्स में ही उन्होंने अपना संगीत दिया था, लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता जो थी ना वो इस कदर है कि आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर वो राज करते हैं, है ना। तो चलिए, जब बात नौशाद साहब की हो रही है तो भाई गीत भी उन्हीं का हो, है ना।

से यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। स्टे ट्यून्ड।

साथियों, आपने ट्यून किया रेम एफएम 101.9 और जहां पर मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में अब हम बात कर रहे हैं नौशाद साहब की। जी हां साथियों, नौशाद अली साहब को लेकर ना कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि नौशाद साहब की शादी में उनके ही गाने की धुन बजाई जा रही थी। अब यहाँ तक तो ठीक है साथियों, पर मजे की बात यह है कि उनके घर वालों को ही नहीं पता था कि नौशाद साहब जो है संगीतकार हैं और वो फिल्मों में गाना कंपोज करते हैं। अब नौशाद के ससुराल वाले जो है ना, वो उन्हें टेलर समझते थे। साथियों, ये वो दौर था जब फिल्मों में काम करना ना अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए नौशाद साहब के पिता, जो खुद मुंशी का काम करते थे, वो संगीतकार के ससुराल वालों को जो है ऐसे उन्होंने बताया कि नौशाद एक टेलर है। और इस बात से नौशाद साहब ने भी अपोज नहीं किया, मतलब उन्होंने भी कुछ कहा नहीं, चुपचाप हामी भर ली। अब शादी के दिन जब उनकी बारात जाने लगी ना, तो बैंड वाले उनकी ही फिल्म रतन के गानों की धुनें बजा रहे थे। जी हाँ, कहा जाता है कि उनके ससुर और पिता जो थे, उन्हें उस समय नहीं पता था कि ये नौशाद साहब जो है संगीतकार हैं, और वो जो है संगीतकार को, मतलब वो जो धुन बजा रहे थे, उस धुन के संगीतकार को कोस रहे थे कि फिल्मों में किस तरह का संगीत दिया जाता है। मगर साथियों, नौशाद साहब ये भी नहीं कह पाए कि ये संगीत उन्होंने ही तैयार किया है। कैसी जो है विडंबना रही होगी, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं साथियों जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, बट लेट्स टर्न द कार्ड्स स्लोली। जी हाँ, व्हाट डू यू से, क्या कहना है आपका?

0: रेनबो 101.9
1: साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर एक अहम जानकारी आप सभी के लिए।
2: మీ సొంతింటికల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్ తో మీ సొంతింటికల ఇప్పుడు మరింత సులభం. ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటు కేవలం 7.20%, సులభమైన ఈఎంఐలు ప్రతి లక్షకు కేవలం 679 రూపాయల నుంచే ప్రారంభం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఈ రోజే మీ సమీపంలో ఉన్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ను సంప్రదించండి. మీ సొంతింటికలకు బలమైన ఆర్థిక తోడ్పాటు.
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब, जहां पर आज फिलहाल हम बात कर रहे हैं नौशाद अली साहब की। जी हां, महान संगीतकार नौशाद अली साहब की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। साथियों नौशाद साहब को जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए सन 1981 और 1992 यानी कि 1981 और 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नौशाद अली साहब संगीत की दुनिया में आए दिन जो है नए आयाम स्थापित करते थे। उस जमाने में टेक्नोलॉजी के बिना ही उन्होंने संगीत में एक से बढ़कर एक साउंड इफेक्ट्स का उपयोग किया था। यही नहीं, नौशाद साहब ने फिल्म मुगले आजम में भी अपनी तकनीक से लोगों को हैरान कर दिया था। जी हाँ साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने मुगले आजम के गीत ए मोहब्बत जिंदाबाद के लिए कोरस पार्ट के लिए 100 म्यूजिशियंस का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, 100

म्यूजिशियंस। यही नहीं, मुगले आजम में प्यार किया तो डरना क्या, याद आया कुछ, प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ साथियों, इस गीत में ईगो इफेक्ट लाने के लिए नौशाद साहब ने लता मंगेशकर जी को बाथरूम में खड़े होकर गाने के लिए कहा था। है ना खास बात, मतलब वो ऐसे ही चीजों से नई चीजें लाया करते थे अपने गीतों में। तो चलिए, जब बात मुगले आजम की और इस विशेष गीत की चल रही है जिसके लिए लता मंगेशकर जी को, जी हाँ, सुर साम्राज्ञी, स्वर्गीय सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को बाथरूम में खड़े होकर गाने के लिए कहा गया था, उसी गीत को सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, आपने ट्यून किया रेन एफएम 101.9 पर और मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति, जो पी का पी यानी कि प्रीति का पिटाना लेकर आए उसके हम दूसरे स्तंभ में पहुंच गए हैं। नमस्ते हेलो आदाब में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल ज्ञानचंद जी का ज्ञान। तो भाई साथियों, एक बार ना श्रीमती ज्ञानचंद जी ने ना मतलब उनको बहुत गुस्सा आया था, कुछ बात हो गई थी ज्ञानचंद जी और श्रीमती ज्ञानचंद जी में कुछ झड़प हो गई थी। तो श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि ज्ञानचंद जी, ये आप हर बात में मेरे मायके वालों को क्यों बीच में लेके आ जाते हो। तो इस पर ज्ञानचंद जी ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि श्रीमती जी, जब कोई टीवी खराब हो जाता है तो क्या हम टीवी को थोड़े ही ना बोलते हैं, हम तो कंपनी वालों को ही गालियां देते हैं ना, बस वही बात है, समझ जाइएगा। अब उसके बाद में क्या हुआ ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि हमेशा क्या कहते हैं ज्ञानचंद जी, जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। वैसे ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ज्ञानचंद जी आपके साथ साझा करना चाहते हैं, पर फिलहाल आप ही में से आप ही की फरमाइश इस प्यारे से गीत की ओर बढ़ते हैं। साथियों, यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसको डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232342। स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि आज कैसे आ गए, तो साथियों

0: FM Rainbow 101.9
1: యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు అందిస్తున్నారు అద్భుతమైన 444 రోజుల డిపాజిట్ పథకం.
2: ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో వృద్ధులకు 7.10% మరియు వయోవృద్ధులకు అదనంగా 0.25% వడ్డీ రేటు.
1: మరిన్ని వివరాలకు మీ దగ్గరలో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్ ను సంప్రదించండి.
0: FM Rainbow 101.9.
3: नमस्ते, हेलो, आदाब. मैं हूँ आपकी आरजे श्रिया और आप सुन रहे हैं रेनबो FM 101.9. सबसे पहले आज कैलेंडर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है. आज है इंटरनेशनल हैंड हाइजीन डे. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हाथ धोना तो बचपन से करते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है. अब देखो, हमारे लिए हाथ तो का कनेक्शन सीधे दिल से होता है, चाहे वो माँ के हाथ का खाना हो या दोस्तों से वो हैंडशेक. पर एज पर एक्सपर्ट्स, यही हाथ हमारे सेहत का रिमोट कंट्रोल भी है. आज का दिन बस एक जेंटल रिमाइंडर है कि हम अपनी सेफ्टी अपने हाथों में ही रखें. तो आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे इसी बारे में. और अभी आप सुनेंगे एक प्यारा सा गाना, उसके बाद हमने एक टॉक कंटिन्यू करेंगे.

0: శ్రీ చైతన్య నుండి.
1: सो वेलकम बैक. हम बात कर रहे थे हैंड हाइजीन के बारे में, और ऑनेस्टली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक छोटी सी हैबिट है. मेडिकल प्रोफेशंस सजेस्ट करते हैं कि जब भी हाथ धोए तो कम से कम 20 सेकेंड का वक्त ले. अब 20 सेकेंड सुनने में लगता है कि भाई इतनी देर, पर सोचो इतना टाइम तो हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने में लग जाते हैं. तो अपने लंग्स और स्टमक के लिए 20 सेकेंड तो निकाल ही सकते हैं ना. और रिमेंबर, जर्म्स को बाय बाय बोलना है तो साबुन से दोस्ती तो करनी पड़ेगी, स्ट्रेस भी कम और जर्म्स भी ख़त्म. अभी हम सुनेंगे एक गाना, और उसके बाद और हैंड हाइजीन के बारे में क्या क्या कर सकते हैं ये हम सुनेंगे.

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: सो वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब. मैं हूं आपकी आरजे श्रिया और आप सुन रहे हैं रेनबो एफएम 101.9. तो हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल हैंड हाइजीन डे पे हम क्या क्या कर सकते हैं. हमारे यहाँ ना खाने के बिना तो कुछ बात पूरी होती ही नहीं है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिना हाथ धोए खाना खाना मतलब उन सब जर्म्स को खाने का इन्विटेशन देना, क्योंकि हमारे हाथ दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ हम सर्फेसिस को टच करते रहते हैं, चाहे वो लिफ्ट के बटन हो या फिर फ़ोन हो, कीस हो, ऑफिस के फाइल्स हो, या फिर कोई कॉफ़ी मशीन या फिर कोई वाटर डिस्पेंसर भी. तो बस एक सिंपल सा रूल है, खाने के प्लेट उठाने से पहले साबुन से दोस्ती करना. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, आजकल हम अपने दोस्तों से ज़्यादा फ़ोन से टच में रहते हैं. सुबह से रात तक फ़ोन हमारे साथ रहता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि फ़ोन की स्क्रीन पर काफ़ी बैक्टीरिया हो सकती हैं क्योंकि हम उसे हर जगह कैरी करते हैं. दे सजेस्ट कि हाथ साफ करने से करना ही फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल. जब हम हमारे हाथ साफ रखते हैं तो हम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रखते हैं. इट्स ऑल कनेक्टेड दोस्तों. सो आप ऐसे हाथ धोते रहिए और हमेशा अपने को सेफ रखिए और दूसरों को भी सेफ रखिए. तो अभी हम सुनेंगे एक गाना, उसके बाद और बातें करेंगे.

0: साथियों फैन तो अब आप आरजे श्रिया के भी हो गए होंगे, है ना, जो इतनी प्यारी प्यारी बातों से आपको लुभा जो रही है।
1: FM Rainbow 101.9।
2: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
3: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: FM Rainbow 101.9।

0: सो वेलकम बैक। सो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल हाइजीन डे, हैंड हाइजीन डे पर। सो देखिए, हम 2026 में डिजिटल हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं, पर बेसिक वही, यानी माँ के खाने से पहले हाथ अच्छे से धो लेना वाला रिचुअल। सो हैंड हाइजीन कोई एक दिन का टास्क नहीं है, ये तो एक लाइफस्टाइल है और एक इजी और अच्छा तरीका है खुद को फिट रखने का। सिंपल, हाथ धोना आपके परिवार को बड़े मेडिकल बिल से बचा सकता है। एज पर एक्सपर्ट्स, हैंड हाइजीन इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी यू कैन एवर हैव। तो चाहे कितनी भी जल्दी हो, लेट्स नॉट स्किप द सोप। स्वस्थ रहिए, साफ रहिए और अपने स्माइल को कंटेजियस रखिए, जर्म्स को नहीं।
1: यस, परफेक्ट श्रेया, बहुत अच्छी बात आपने हेल्थ हाइजीन, हैंड हाइजीन के बारे में बताई है। बहुत अच्छे, परफेक्ट।
2: I found a love for me।
1: साथियों, जब श्रेया परफेक्ट है तो सॉन्ग भी परफेक्ट होना चाहिए, है ना?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी कामगार विभाग के मंत्री हंस ल्यूब कैगडेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रवासियों के आवागमन और पलायन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इस संघर्ष में नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होर्मुज जलडमरों मध्य में मुक्त और निर्बाध आवाजाही की भी अपील की। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉ. अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सिया पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा

0: नमस्ते, हेलो, आदाब में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए।
1: మీ మార్కెట్ రిటర్న్స్ ను వేగంగా పెంచుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? LIC ఇండెక్స్ ప్లస్ నెలకి కేవలం 2500 రూపాయల ప్రీమియం తో ఫ్లెక్సీ స్మార్ట్ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 50 లోని స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెడుతుంది, లేదా ఫ్లెక్సీ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 100 పై దృష్టి సారించి అభివృద్ధిని లక్ష్యంగా ఉంచుతుంది. LIC హర్ పల్ ఆప్కే సాథ్.
2: FM Rainbow 101.9.
0: वेलकम बैक दोस्तों, आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर पुनः एक बार आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति, जो पी का पी यानी कि प्रीति का पिटारा लेकर आई हूं, और आप है नमस्ते हेलो आदाब के लास्ट सेगमेंट में, जहां पर हम बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे। पर एज यूजुअल भाई, शुरुआत तो ज्ञानचंद जी के ज्ञान से ही होगी, है ना। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार परसों की बात है, अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो यूजुअली जो है सारे लेडीज या फिर बच्चे जो है अपने मतलब लेडीज़ जो है वो मायके गई हुई है, बच्चे ननिहाल, तो ना ज्ञानचंद जी भी बहुत खुश थे। तो मैंने पूछा क्या बात है ज्ञानचंद जी, तो बोले कि भाई क्या बात है, ऐसे मत पूछ, बहुत मज़े की बात है कि श्रीमती ज्ञानचंद जी मायके गई हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप उनको मिस कर रहे होंगे। तो अब वो बात का जवाब उन्होंने क्या दिया होगा, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन एक बात है कि श्रीमती ज्ञानचंद जी ना जब भी मायके जाती है ना, तो हर दिन जो है ज्ञानचंद जी को फ़ोन करती है। तो उन्होंने मुझे पूछा ज्ञानचंद जी ने कि प्रीति, ये जो जब पत्नियां मायके जाती है ना, तो रोज़ जो है फ़ोन करके क्यों पूछती हैं अपने पतियों से, क्यों बात करती हैं? तो मैंने कहा भाई ज्ञानचंद जी, ये तो प्यार की बात है कि जब भी पत्नी जाती है तो वो अपना कंसर्न अपने पति के प्रति बताना चाहती है, इसके लिए जो है रोज़ फ़ोन करती है। तो इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा कि ये गलत बात है। अब आप ही बोलिए, क्या ये गलत है? नहीं है ना। लेकिन ज्ञानचंद जी का वर्जन क्या है बताऊं आपको। ज्ञानचंद जी कहते हैं कि जब भी पत्नियां मायके जाती हैं, तो वो रोज पतियों को इसलिए फोन करती हैं ताकि पतियों को याद रहे कि मुसीबत टली नहीं है, फिर से आने वाली है। भाई आप अपने घर में ये नुस्खा कभी मत आजमाना, ज्ञानचंद जी के कहने पर आजमाओ तो अपने रिस्क पे आजमाना, क्योंकि फिर आप मुझे आके ये मत कहना कि ज्ञानचंद जी ने कहा था, प्रीति तूने कहा था, मैंने नहीं कहा, ये सब ज्ञानचंद जी के हथकंडे है ना। चलिए, ये तो बहुत सारी बातें हो गई, पर कुछ अहम बातें भी आप तक हमें पहुंचानी है, और अहम बातों को आपसे हम साझा करेंगे, अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ विशेष जानकारियां होती है जो हमें आप तक पहुंचानी होती है। जी हाँ, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर फॉर अ स्मॉल कमर्शियल स्पॉट एंड देन

0: be catching you.
1: FM Rainbow 101.9.
2: है? न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
3: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
2: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
3: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप आरोप डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: FM Rainbow 101.9।
0: और साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि भले ही ज्ञानचंद जी और श्रीमती ज्ञानचंद जी के बीच में कितनी ही नानुकुर, कितने ही जो है छोटी छोटी बहस ना हो जाए, पर आखिर में कहेंगे दोनों यही, क्या

0: रेनबो 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना शो नमस्ते हेलो आदाब आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ। और हम इतने समय से आपके साथ बने हुए हैं, आप सोच रहे होंगे कि आपके मैसेजेस हम कब शामिल करेंगे। भाई आपके मैसेजेस भी शामिल कर रहे हैं, मायूस मत होइएगा। वैसे साथियों यदि आप भी, जी हाँ आप ही से कह रहे हैं, यदि आप भी कोई मैसेज सुनना चाहते हैं या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234821। और मैसेजेस की और बढ़ूं तो मैसेज भेजा है, आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर जुगल किशोर जी जाजू और श्रीमती उमा जी जाजू, क्या बात है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आपको। और हम आपको यही जो है शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जिंदगी के सफर में बना रहे आपका साथ, जिंदगी के सफर में बना रहे आपका साथ, आपके खूबसूरत रिश्ते पर ना आए कभी कोई आंच, हर पल हर लम्हा महकता रहे आपका रिश्ता आपका प्यार, जिंदगी में हर पल आए खुशियों की बहार। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डॉक्टर जुगल किशोर जी जाजू एंड डॉक्टर उमा जी जाजू को। तो चलिए उमा जी और जुगल किशोर जी एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं, शायद वो भी आपस में एक दूसरे को यही कह रहे हैं ना कि फलक तक चल साथ मेरे ऑब्वियसली। तो चलिए उसी प्यारे से गीत की ओर बढ़ते हैं। साथियों ऐसे में आपकी भी कोई फरमाइश है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। स्टे ट्यून्ड।

0: रेनबो 101.9।
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब आपकी धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ। और ढेर सारे मैसेजेस जिसमें आपको बताया आकर हैं। सैयद मुनीरुद्दीन ने मैसेज भेजा है, कुछ खास नहीं लिखा है और साथ ही मैसेज भेजा है, इन्होंने अपना नाम कहाँ लिखा है चलिए ढूंढते हैं, पर मैसेज पहले पढ़ लेते हैं। आपकी दोस्ती को एहसान मांगते हैं, निभाना अपना ईमान मानते हैं, लेकिन हम वो नहीं जो दोस्ती में अपनी जान दे देंगे, क्योंकि दोस्तों को तो हम अपनी जान मानते हैं। वाह वाह वाह क्या बात है। और साथ ही लिखा है कि नमस्कार प्रीति जी, आप आ गए, आप सुपर सुपर शो, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। ओके थैंक यू। और साथ ही मैसेज भेजा है, इन्होंने भी अपना नाम मेंशन नहीं किया है। ओके इनका नाम है हैदराबादी, ओके हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल शाह जी, क्या बात है। इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की वो हमने ऑलरेडी प्ले कर दिया है और मैसेज किया है कि ऐसी बेवफाई की उसने मोहब्बत भी बदनाम हो गई। अपनी मोहब्बत की कितनी कीमत अपनी मोहब्बत की इतनी कीमत वसूल की उसने कि हमारी अर्थी भी नीलाम हो गई। भाई दिल को छू लेने वाली बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात। और मैसेज भेजा है रेडियो शौकीन सरवर जी ने, वो एक गीत की फरमाइश कर रहे हैं। चलिए बहुत जल्दी आपके गीत को हम आप तक पहुंचाएंगे। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं दोस्तों, पर कुछ अहम जानकारियाँ आप तक पहुँचानी हैं तो पहले हम उसी और बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड।
0: FM Rainbow 101.9।

0: Rainbow 101.9।
1: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
2: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: FM Rainbow 101.9
3: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं सुहाने गीतों का सफर आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में, जहां पर हम अभी फिलहाल आपके मैसेजेस शामिल कर रहे हैं। तो मैसेज भेजा है बाचूपल्ली से प्रशांत जी डागा और अर्पिता जी डागा ने, कह रहे हैं कि कल उनकी प्यारी गुड़िया रानी, उनकी प्यारी लाडो रानी का बर्थडे है, इसलिए वो उन्हें आज एडवांस में विशेष देना चाहते हैं। कहते हैं कि आसमान का चांद तेरी बाहों में हो, आसमान का चांद तेरी बाहों में हो, तू जो चाहे वो तेरी राहों में हो, हर वो सपना हो पूरा जो तेरी आंखों में हो, और खुशकिस्मती की हर लकीर तेरे हाथों में हो। भाई वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारे विशेष आपने भेजे हैं। और कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे अनीशा। ओके चलिए, अनीशा जी को हम सभी की ओर से भी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन एडवांस। और एक प्यारा सा गीत आपने प्यारी बेटियों के लिए डेडिकेट किया है, और स्पेशली अपनी प्यारी गुड़िया रानी अनीशा के लिए जो डेडिकेट किया है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: रेनबो 101.9।
1: साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर अब बारी एक अहम जानकारी की।
2: ललो दारी तपनी स्वेच्छा लोपालु सरिदिद्दे व्यवस्था नलभै एळ्ळानुभवं चेप्पे पाठं गुरि तप्पनि प्रोग्रामुल बलं अन्नि ఒక్క శ్రీ చైతన్యలోనే।
0: FM Rainbow 101.9।
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं सुहाने गीतों का सफर आपकी धड़कनों पर जीते आरजे प्रीति के साथ आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में, जहां पर बहुत सारी बातें आपके साथ मुझे साझा करनी हैं। बहुत सारे मैसेजेस भी आकर हैं और मैसेजेस की ओर बढ़ने से पहले एक विशेष बात आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। साथियों गर्मियों की छुट्टियों में आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बद्रीनाथ जो है ना वो एक आदर्श गंतव्य यानी कि एक आइडियल डेस्टिनेशन हो सकता है। चार धाम में आने वाले मंदिरों में से एक यह मंदिर जो है वो वर्ष भर में केवल 6 महीने ही खुला रहता है और बाकी 6 महीने इसके कपाट बंद रहते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर लगभग 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊपर बना ये मंदिर सदियों से प्रकृति की सबसे कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए आज भी साथियों मजबूती से खड़ा है। सोचिए चारों तरफ बर्फीले पहाड़, सर्दियों में कई कई फीट तक गिरने वाली बर्फ और ऊपर से ये इलाका जो है वो एक एक्टिव भूकंप जोन में आता है और फिर भी ये मंदिर आज तक सुरक्षित है। कैसे ये जानने के लिए जुड़े रहिएगा और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं आप ही में से आप ही की फरमाइशों की ओर, जिसे भेजा है डॉक्टर खान एंड फैमिली निजामबाद से। कहते हैं कि इट वाज लॉन्ग वेटिंग फॉर हिंदी शो, वेलकम जी। और एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं, तुमको हमारी उम्र लग जाए, बहुत प्यारा सा गीत। कहते हैं कि दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू, स्पेशल विशेस फ्रॉम ऑलमाइटी फॉर योर हेल्थ एंड हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ वेयर एवर यू आर, प्रेयर्स फॉर वेलबींग। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर खान साहब, आपने अपने दिल में इतनी जगह दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आप ही में से आप ही की फरमाइश आप ही के लिए, स्टे ट्यून्ड। वैसे साथियों यदि आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। स्टे ट्यून्ड।

0: 101.9
1: సిరి పెయింటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, హిమాయత్ నగర్, జూబ్లీ హిల్స్. ఈ వేసవి సెలవుల్లో పెయింటింగ్ లో ఆసక్తి ఉన్న వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వబడును. ఫోన్ నంబర్ 9849419642.
0: FM Rainbow 101.9.
2: और साथियों, आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब, जहां पर फिलहाल हम जो है गर्मी की छुट्टियों में एक आइडियल डेस्टिनेशन बद्रीनाथ के बारे में आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान और तकनीक दोनों भी हैं, और खैर आस्था और विश्वास तो है ही। प्रकृति के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित इस बद्रीनाथ मंदिर के डिज़ाइन को हमें सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि साथियों बद्रीनाथ मंदिर जो है वो उत्तर भारतीय नागर शैली में बना है, जिसमें ऊपर ऊंचा शिखर होता है। चूंकि यहाँ सर्दियों में बहुत भारी बर्फ गिरती है, तो यदि मंदिर की छत सपाट होती तो जमा हुई बर्फ का वजन धीरे धीरे धीरे जो है पूरे ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता था, है ना। इसीलिए मंदिर को ऊंचे शिखर और ढलान वाले स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया, ताकि बर्फ छत पर जमा होने के बजाय नीचे फिसल जाए। मंदिर के जो ऊपरी हिस्से में धातु की परत भी लगाई गई है, जैसे कि तांबा वगैरह है, तो ये मात्र सजावट नहीं है साथियों, बल्कि पत्थरों को बारिश और बर्फ से काफी हद तक सुरक्षित रखने के लिए भी सहायता करती हैं। और भी जानकारी साझा करूंगी, पर फिलहाल आप ही में से आप ही की फरमाइश की और बढ़ते हैं। और मैसेज भेजा है इन्होंने अपना नाम, यस, रेडियो शौकीन सरवर जी, ये लीजिए आप ही में से आप ही की फरमाइश आप ही के लिए। स्टे ट्यून्ड, फिल्म लीडर से एक प्यारा सा गीत।

0: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं सुहानी गीतों का सफर, आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति के साथ आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में। और स्टूडियोज की घड़ी में 12:49:25 हो रहे हैं और बहुत जल्द हम आपके फेवरेट शो यानी कि हेलो रेनबो की ओर बढ़ेंगे। पर उससे पहले हम बद्रीनाथ के बारे में जो बात कर रहे हैं तो उसकी बात आपको बताऊं कि डिजाइन के बारे में तो मैंने आपके साथ जानकारी साझा की। अब मंदिर की नींव की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर ना बड़े बड़े पत्थरों से गहरी और मजबूत फाउंडेशन बनाई गई है ताकि जमीन में हल्का मूवमेंट होने पर भी मंदिर सुरक्षित रहे। और क्योंकि ये इलाका भूकंप से जो है भूकंप यहाँ पर बहुत आते हैं और पहाड़ी क्षेत्र से है तो यहाँ पर पत्थर और लकड़ी के मिश्रण वाली पारंपरिक तकनीक भी उपयोग में की गई है जो कि झटकों की जो भूकंप के झटके होते हैं उसकी ऊर्जा को सहन करने में सहायता करती है। इस मंदिर के पास ना एक प्रसिद्ध तप्त कुंड भी है जहाँ का पानी प्राकृतिक रूप से गर्म रहता है और ये गर्मी जमीन के अंदर मौजूद जियोथर्मल ऊर्जा के कारण होती है। सदियों पुराना ये मंदिर आज भी साथियों हमें ये बताता है कि प्राचीन भारत की वास्तुकला कितनी अद्भुत और वैज्ञानिक थी। और दोस्तों ऐसे अद्भुत संगम को देखना तो बनता है ना। तो चलिए यहाँ पर आप अपना प्लान बनाइए, तब तक फिलहाल हम आप ही में से आप ही की फरमाइशों की ओर बढ़ते हैं। और मैसेज भेजा है फलकनुमा पैलेस से उमर खान ने, एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं काइट मूवी, तो चलिए उसी ओर बढ़ते हैं, स्टे ट्यून्ड। परंतु किसी भी प्यारे से गीत की ओर बढ़ने से पहले एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचाते हैं।
1: బీమా కవచ్ మీ జీవిత అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతూ ఉండే ఒక ప్యూర్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్, కీలకమైన లైఫ్ స్టేజెస్ లో మీ సమ్ అష్యూర్డ్ ని పెంపొందించుకునే అవకాశం, ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రీమియం పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ 100 సంవత్సరాల వరకు అందుబాటులో ఉండే లైఫ్ టైమ్ రిస్క్ కవర్ తో ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండండి. ఎల్ఐసి హర్ పల్ ఆప్కే సాథ్.

साथियों, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा गीत। अरे भाई, जब आप अलर्ट है या नहीं है ये भी तो देखना पड़ता है ना कि हमारी श्रेया ने आपको एक गीत बताया और आप सोच रहे होंगे कि दूसरा गीत चला गया। नहीं, ये तो हम आप अलर्ट है या नहीं है ये देखने के लिए ये गाना उन्होंने प्ले किया। खैर, एनीवेज, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में। स्टे ट्यून्ड। और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम, आने वाला है हेलो रेनबो, बिल्कुल इसके बाद में।

0: Rainbow 101.9.
1: నేను ఎం శ్రీనివాస్, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, హైదరాబాద్. పిల్లల పరంగా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు 1098కు కాల్ చేయండి. 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట.
2: और साथियों, आकाशवाणी के उसी FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आप ही में से आपकी की फरमाइश आप सभी के लिए आपके अपने प्रोग्राम में, जहां मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति लेकर आई हूं पी का पी यानी कि प्रीति का पिटारा, और जिसमें समय हो चला है आपके पसंदीदा प्रोग्राम हेलो रेनबो का। तो हेलो रेनबो में आगे बढ़ने से पहले बात ज्ञानचंद जी की। एक दिन ना ज्ञानचंद जी को नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने रात में जो है श्रीमती ज्ञानचंद जी से कहा कि श्रीमती जी क्या कर रही हो, मुझे नींद नहीं आ रही है। इस पर श्रीमती ज्ञानचंद जी ने तुरंत कहा कि अच्छा, नींद नहीं आ रही है तो एक काम करो, रसोई में बर्तन पड़े हैं जाके वही धो लो। अब इतना सुनना था कि पता है श्रीमती जी की बात सुनकर ज्ञानचंद जी ने क्या कहा? ज्ञानचंद जी ने कहा कि अरे पगली, मैं तो नींद में बात कर रहा हूँ। पर साथियों, अब आपको नींद में बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जी हाँ, आपके अपने प्रोग्राम हेलो रेनबो में। तो यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको मैं हमारे नंबर्स बता दूं कि 0402320023004821 या फिर 0402970417 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि हमारी फोन लाइंस बिजी आ रही हैं तो भाई साथियों, नाराज नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, बस हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कर देने का। व्हाट्सएप हमारा ना व्हाट्सएप नंबर है +91040232342। और आगे बढ़ने से पहले आप ही में से आप ही की फरमाइश मैसेज भेजा है। अजहरुद्दीन साहब ने एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं, वो उनका जलवा दिखाना चाह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है उनका जलवा। और जलवे की गीत की और आगे बढ़ने से पहले आपके साथ यस ऑफ कोर्स मैं टॉपिक साझा करना चाहूँगी। टॉपिक है कि साथियों, जीवन में रिश्ते होना ज़्यादा आवश्यक है या फिर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़्यादा आवश्यक है। गौर कीजिएगा, जीवन में रिश्ते होना ज़्यादा आवश्यक है या फिर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़्यादा आवश्यक है। जिंदगी में रिश्ते या रिश्तों में जिंदगी, क्या कहना है आपका बताइएगा। हमें कॉल करने के लिए नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, और एक कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं पर शायद उनका कॉल लग नहीं पा रहा है। चलिए हम प्यारे से गीत की ओर बढ़ जाते हैं और पुनः आपके साथ जुड़ेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: 101.9 और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि जीवन में रिश्ते होना चाहिए, रिश्तों में जीवन होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसी भी कॉलर की ओर बढ़ने से पहले यही आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया अपनी बात आप संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून।
0: हैप्पी आफ्टरनून। हैप्पी आफ्टरनून सर।
1: ఇంకొక ఆర్జీ ఉన్నారు కదా లోపల
0: లోపల కూడా ఇంకొక రెండో ఆర్జీస్ ఉన్నారు సార్?
1: లేదా ఆర్జీ లేదా ఇంకొక ఆర్జీ
0: ఉన్నట్టు సార్ మాట్లాడతారా?
1: ఏం మాట్లా
0: చెప్పండి సార్.
1: హలో హలో.

0: హలో చెప్పండి సార్.
1: అమ్మా నీకు దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ ఇద్దరికి కూడా.
0: థ్యాంక్ యూ సార్.
1: థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అదే అడిగా కదమ్మా, జీవితము జీవితానికి రిలేషన్షిప్ ముఖ్యమని.
0: అవును సార్ చెప్పండి.
1: అమ్మా రిలేషన్షిప్ అవసరమేమ్మా, ఖచ్చితంగా. బంధుత్వం కానీ స్నేహితం కానీ ఖచ్చితంగా మనకు
0: సార్
1: ఉండి
0: బంధుత్వం
1: రాసింది.
0: ఉండి వాళ్ళతో మాట్లాడలేకపోతే మళ్ళీ దానికి ప్రయోజనం ఏంటి సార్ అది చెప్పండి.
1: ఏమ్మా
0: బంధుత్వం ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఉండాలి సార్. కానీ మనము ఆ బంధుత్వంలో మాట్లాడము అంటే అది ఆ బంధుత్వంలో లైఫే లేదు. మళ్ళీ ఆ బంధుత్వం ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి సార్?
1: అవునా, బంధుత్వం మాట్లాడకుండా పోతే మనకి ఎంతో ఎట్లో ఫీల్ అయిపోతాం, ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోతాము. కాబట్టి ఆ బంధుత్వంతో మనం కలిసిమెలిసి ఉండాలనే కోరుకుంటాం. కాబట్టి ఎప్పటికైనా కానీ బంధుత్వం కానీ ఫ్రెండ్షిప్ కానీ దాన్ని నిలుపుకోవాలమ్మా, నిలుపుకుంటేనే జీవితం బాగుంటుంది.
0: ఓకే సార్, చాలా మంచి మాట.
1: ఓకేనమ్మా,
0: థ్యాంక్ యూ సార్.
1: ఓకే ఓకే.
0: तो साथियों इनका ये कहना है कि भाई अपने रिश्ते मेंटेन करने चाहिए. तो यदि आप भी अपनी बात हमारे इस विषय पर साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. पर आपसे बात करने से पहले कुछ विशेष जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं. स्टे ट्यून्ड.
2: FM Rainbow 101.9.
3: మీ సొంత ఇంటి కల సాకారానికి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి అద్భుత అవకాశం.
4: అతి తక్కువ వడ్డీ రేటు 7.15% గృహ రుణాలను అందిస్తోంది.
3: అంతేకాక మీ యొక్క అత్యవసరాలకై బంగారంపై తక్షణ రుణ సదుపాయం, అతి తక్కువ వడ్డీ రేటుతో పాటు గ్రాముకి అత్యధిక రుణం అందిస్తుంది.
4: మీ సమీపంలోని యూనియన్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ని నేడే సంప్రదించండి.
0: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि जिंदगी में रिश्ते होना चाहिए, रिश्तों में जिंदगी होना चाहिए. तो इस पर हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है. हेलो रेनबो.
5: गुड आफ्टरनून मैडम.
0: हैप्पी आफ्टरनून मैडम. कैसे हैं आप?
5: हाउ आर यू?
0: आपसे बात करने के बाद में तो एकदम फाइन हो गया मैडम.
5: थैंक यू थैंक यू. रिश्तों में मोहब्बत आप जो बोले ना, रिश्ता रिश्ता वो होना है जो मोहब्बत है,
0: जो मोहब्बत
5: मोहब्बत है
0: जिसमें मोहब्बत है वो रिश्ता होना चाहिए. बहुत सही बताया आपने. वैसे
5: जी बताने में भी वैसी है, मेरे को घेर लेते पकड़ लेते लोग.
0: आप मोहब्बत बिखेरती है इसके लिए आपको पकड़ लेते हैं. बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत
5: पकड़ते वैसा पकड़ लेते.
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा.
5: ख्याल करती हूँ, आगे भी जाती हूँ सब.
0: जी
5: सब आगे भी जाती हूँ इसलिए सब कुछ होते.
0: हाँ तो इसीलिए वही मोहब्बत हम तक पहुँच गई है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो साथियों ये थी मैं जबीन जी, जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ साझा की. जल्दी से अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं. हेलो रेनबो.
6: वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मैडम जी.
0: वेरी वेरी वेरी वेरी श्रीनिवास राव जी ने जितने वेरी कहे उससे एक और वेरी में हैप्पी आफ्टरनून श्रीनिवास राव जी. कैसे हैं आप?
6: तो आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है.
0: बहुत बहुत धन्यवाद.
6: टॉपिक है, हम तो चाहते हैं कि रिश्ते के साथ चलना हमारा काम है.
0: बिल्कुल.
6: रिश्ते कोई भी हो, या फ्रेंडशिप हो, घर का हो, इधर भी रहा तो भी किन से भी बात करे तो अपन मोहब्बत से बात करे तो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाता है, हम अपना काम कर ले सकते हैं. तो मैं एक बात क्या कहना चाह रहा हूँ, तो एक January 28 को एक लाफिंग क्लास और लाफिंग क्लब शुरू कर रहा हूँ.
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात.
6: तो वो चलते चलते चलते हुए आज उसका स्कोर क्या, आज का स्कोर बोलता हूँ, आज का 38 स्कोर है.
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर.
6: तो हमारे पार्क में डेली मौका 10 मिनट का काम है बस इतना ही.
0: बहुत अच्छी बात है, मतलब आप जो है रिश्तों में जिंदगी फूंकने के लिए ये काम कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए. साथियों हम आपसे जुड़ने से पहले यही नम्र निवेदन करते हैं कि कृपया आप अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो. और यहाँ पर मैसेजेस की ओर बढ़ती हूँ. मुनीर अली ने मैसेज किया है, एक गाने की फरमाइश कर रहे हैं, ये गीत चलिए हम आपको सुनवा देते हैं. स्टे ट्यून. यदि आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर हैं 2323-4821, 2323-4822 या फिर 2970-4715 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं साथियों.

0: रेनबो 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि जिंदगी में रिश्ते होना ज्यादा जरूरी है या फिर जो रिश्ते हैं उनमें जिंदगी होना ज्यादा जरूरी है। तो इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी नम्र निवेदन के साथ उनकी ओर बढ़ती हूं कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो।
2: हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून।
1: हैप्पी आफ्टरनून अजहरुद्दीन साहब, कैसे हैं आप?
2: हैप्पी मैडम, आप कैसे हैं?
1: आपकी आपसे बात करने के बाद में तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए हैं।
2: जी
1: बताइए।
2: एंड आप मेरे रिक्वेस्टिंग सॉन्ग प्ले करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वेलकम।
2: जी, जिंदगी में रिश्ते तो होते ही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है ना ही कोई बड़ी बात है, लेकिन रिश्तों में जिंदगी होना चाहिए असल।
1: एग्जैक्टली, रिश्तों में जिंदगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल जैसे हम काफी सारे जो रिश्ते

0: रेनबो 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि जिंदगी में रिश्ते होना जरूरी है या रिश्तों में जिंदगी होना ज्यादा जरूरी है। तो इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी नम्र निवेदन के साथ आगे बढ़ती हूं कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो।
2: हेलो प्रीति जी।
1: नमस्कार नमस्कार, कौन बात कर रही है?
2: नमस्कार, मुमताज बात कर रही है हशमतपेट से।
1: मुमताज जी रूढ़ी में स्वागत है आपका। मुमताज जी कैसी हैं?
2: आपको भी नमस्कार, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। शेर खान भाई को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत सलाम। हर किसी को ना दुआ में याद रखो बोलो। और रिश्तों की जो बात जो कर रहे, रिश्तेदारी में जरूरी है, जिंदगी में रिश्तेदारी जरूरी है। रिश्तेदारी में रिश्ते रहे तो ही आगे रिश्तेदारी बढ़ती
1: है। बिल्कुल, रिश्तेदारी में जिंदगी हो तो ही रिश्तेदारी आगे बढ़ती है। बहुत सही बात बताई आपने मुमताज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों इसी विषय पर बात करने के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो। हेलो, लगता है कि इन्हें हमारी आवाज़ पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, हमारी आवाज़ नहीं पसंद आई तो नहीं आई, हमारे जो गायक हैं उनकी आवाज़ तो अवश्य पसंद आ जाएगी। चलिए हम अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ना चाहते हैं, पर उससे पहले कुछ मैसेजेस आप तक पहुंचा देना चाहते हैं। मैसेज भेजा है अत्तापुर से राजू, एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं। और भी कुछ मैसेजेस हैं जिनकी ओर हम बढ़ेंगे, पर एक कॉलर की ओर बढ़ जाते हैं। हेलो रेनबो।
3: हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: शिवरामपल्ली से सोनू बात कर रहा हूँ।
1: शिवरामपल्ली से सोनू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू जी, आपको हम सख्त हिदायत यही देते हैं कि कृपया आप मात्र विषय तक ही बात करें और इस मंच की गरिमा को मेंटेन करें।
3: हेलो,
1: बताइए।
3: कपी है ना, रिश्ता और जीवन, परिवार के सुरक्षा का रिश्ता और रिश्ता के शुरू का जीवन। रिश्ता परिवार नहीं, जीवन उसका क्या है? जैसा मेरा और तुम्हारा साथ जो जुड़े हुए रिश्ता, वो रिश्ता तो नहीं है,

0: सोनू जी, आपकी आवाज हम तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है। शायद आपके फोन लाइन में कोई डिस्टरबेंस है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि कृपया आप जो है सिग्नल में आकर बात कीजिएगा, ताकि आपकी बात हमें और बाकी सभी को भी सुनाई पड़े। साथियों, यहाँ पर हम बढ़ते हैं एक प्यारे से गीत की ओर, जो कि अत्तापुर से राजू की फरमाइश है, उस ओर बढ़ेंगे। लेकिन लेकिन लेकिन बात आती है हमारे विशेष जानकारियों की, तो पहले उस विशेष जानकारी की ओर बढ़ते हैं।
1: FM Rainbow 101.9

0: रेनबो 101.9।
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि जिंदगी में रिश्ते होना ज्यादा जरूरी है, रिश्तों में जिंदगी होना ज्यादा जरूरी है। तो इस पर मधुलिका जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार नमस्कार।
2: बहुत दिनों के बाद आए।
1: बस जब बुलाए तब आ गए।
2: वही जयश्री जी को पूछी थी मैं।
1: ओके जी बताइएगा।
2: रिश्ते तो जरूरी है मैडम,
1: रिश्ते जरूरी
2: निभना जरूरी है, वो
1: निभना जरूरी है
2: और दोनों तरफ से निभना, वो
1: निभना जरूरी है क्योंकि रिश्ते तभी निभेंगे जब उसमें
2: अपन तो निभाए, सामने वाले निभाना वो जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात आपने साझा की मधुलिका जी, बहुत अच्छा
2: लगा। मैडम आपके भाई चले गए ना?
1: जी हाँ, पता चला हमें नीरज जी के बारे में, और हम ईश्वर से यही जो है प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं सदगति प्रदान करें। और देखिए जो खाली जगह हुई है वो कोई भी नहीं भर सकता है, बस हम यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि कृपया जो है आपको हिम्मत दें जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए। बहुत दुख हुआ सुनकर मधुलिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जी हाँ साथियों, मधुलिका जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनके श्रीमान जी नीरज जी पांडे जो हमारे रेगुलर कॉलर हुआ करते थे, कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान करें।

0: साथियों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और यहाँ पर हमारा काम है सुनना, है ना भाई? हमारा काम सुनना है, इसलिए आपकी फरमाइशें प्ले कर रहे हैं और आपके साथ बात भी कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पर आज हमने आपसे पूछा कि जीवन में रिश्ते होना चाहिए या रिश्तों में जीवन, तो इस पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
1: हेलो रेनबो, प्रीति जी नमस्ते। या
0: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: वो ठीक हो? ठीक हो, आप आने से और भी अच्छी हूँ।
0: आह,
1: आप
0: बहुत
1: आए
0: बहुत
1: करके मैं
0: धन्यवाद।
1: बात कर रही। नहीं, आप इतने दिनों बाद आए ना। यस,
0: जी
1: आपको आना चाहिए रेडियो पे, मालूम नहीं तो रेडियो बहुत सुना हो जाता। सही बोल रहे?
0: आपने जो है इतनी जगह दी अपने दिल में, उसके
1: नहीं,
0: लिए बहुत
1: जगह
0: बहुत
1: नहीं, वो जगह
0: धन्यवाद।
1: आपने बना ली है भाई। अभी आप रिश्तों की बात कर रहे हैं ना, ना
0: जी
1: मैं आपको देखी ना मैं आप मेरे को देखे, लेकिन एक आवाज से हम लोग आपकी बिहेवियर से बोल तो आप जो बातचीत का लहजा है और आप जो हर किसी को एक हमदर्दी से, ये एक रिश्ता है ना, बोलिए
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: ऐसे
0: कहा
1: रिश्ते।
0: कि एक अनजाना रिश्ता
1: हाँ,
0: है आपके और
1: एक
0: हमारे
1: टाइम आप
0: बीच।
1: आए करके मैं कॉल करी, मालूम, वरना तो आजकल थोड़ा कम कर दी मैं, क्या करूँ
0: धन्यवाद धन्यवाद।
1: या रिश्ते। हाँ प्रीति जी,
0: जी
1: हाँ रिश्ते, देखिए रिश्तों में जिंदगी है, मालूम, जिंदगी तो हम जीते हैं लेकिन जब वो रिश्तों में अपनापन रहता है ना तभी जिंदगी भी रहती है।
0: बहुत सही बात, बहुत अच्छी
1: इसीलिए
0: बात आपने
1: जिंदगी के
0: बताई।
1: लिए बहुत जरूरी, और आज के इस बिजी शेड्यूल में ना पैसा एक पात्र निभा रहा है, जो रिश्ते कम से कम टूट जा रहे हैं ना। वैसे
0: जी
1: नहीं होना चाहिए, दिल से निभाइए आप, दिल से जहां तक आप उन रिश्तों को बचा सकते और एक पहचान, और मिलने से या ना भी मिलो एक फोन कर लिया करो, भाई बात करो तो ये
0: किसी न
1: कितनी
0: किसी
1: अच्छी
0: रूप में
1: बात
0: जुड़े
1: है। वो
0: रहना
1: रिश्तों,
0: ज्यादा आवश्यक
1: हाँ,
0: है।
1: जुड़े रहना चाहिए, तभी आपका रिश्ता भी बचा हुआ रहता है और वो एक जो दिल से लगाव, मन से जो लगाव रहता है ना वो कभी नहीं टूटता। उसको कोई रिश्ते का नाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल होना चाहिए, मन होना चाहिए आपका बस, उसमें तो
0: बहुत
1: अपने
0: सही
1: आप
0: कहा,
1: रिश्ते
0: बहुत
1: बन
0: अच्छी
1: जाते हैं।
0: बात।
1: थैंक यू प्रीति जी, मेरे को टाइम दिया
0: मोस्ट
1: आपने।
0: वेलकम मोस्ट
1: थैंक यू
0: वेलकम,
1: थैंक
0: बहुत
1: यू
0: बहुत
1: थैंक यू
0: धन्यवाद
1: सो
0: आपका
1: मच।
0: जुड़ने के लिए। तो साथियों, रिश्तों में जिंदगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर यही हमारे जो है काफी सारे कॉलर्स का कहना है। कुछ और कॉलर्स की ओर बढ़ते हैं, पर मैसेज की ओर भी बढ़ना चाहते हैं। मैसेज भेजा है शिवानी उमेश यापराल सैनिकपुरी से, कहती हैं एक प्यारा सा गीत की फरमाइश वो कर रही हैं, और ये कहती हैं कि आई डेडिकेट दिस सॉन्ग फॉर माई सेल्फ, आजकल सेल्फ लव इज़ बेटर ऑप्शन, ऐसे लग रहा है। बहुत खूब, बहुत बहुत सही कह रही हैं आप, क्योंकि जब भी आप जो है अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं तब लोग आपके साथ खेलते ही हैं। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने। और हरिहरन, नहीं, ये इन्होंने मैसेज भेजा है, गौतम जी ने हिमायत नगर से एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रहे हैं, वो भी आप तक अवश्य पहुंचाएंगे, पर फिलहाल साथियों समय हो चला है कि कुछ विशेष जानकारियां आप तक पहुंचा दें, तो पहले उसी ओर बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: FM Rainbow 101.9
3: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि जिंदगी में रिश्ते रहना ज्यादा मुख्य है या फिर रिश्तों में जिंदगी होना ज्यादा। तो इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं। और कॉलर्स की ओर बढ़ने से पहले यही नम्र निवेदन करती हूं कि कृपया अपनी बात आप संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो।
4: राधे राधे
3: राधे राधे,
4: सुखचैन से रहना है तो राधे राधे कहना है।
3: बहुत खूब बहुत खूब, हमें तो सुखचैन से रहना है इसीलिए हम राधे राधे ही कहेंगे। बताइए मुरली जी, कैसे हैं?
4: कहिए कहिए प्रीति जी, एकदम एक्सेलेंट। आप कैसे हैं? बहुत दिन के बाद आए हैं, बहुत समय के बाद आए आप।
3: बस जब बुलाया तब आ गए मुरली जी।
4: वो भी तो अच्छा करे प्रीति जी, एकदम सही करे आप। और एक आपके बात, आपका आवाज एकदम सुरीला रहता, आपका आवाज किसको पसंद नहीं आते बोलो आप। आप वैसा बात नहीं कहिए आप।
3: ठीक है, नहीं किसी ने कॉल कट कर दिया तो इसलिए मैंने, अब जरूरी नहीं है ना कि आपको समझ में आए, आपको अच्छी लगे तो सभी को अच्छी लगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना।
4: नहीं आपका आवाज तो बहुत ही अच्छा है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो कहते हैं ना कि अच्छाई देखने वालों की नजर में होती है, वैसे अच्छाई आप में है इसलिए हमारी आवाज आपको अच्छी लग रही है।
4: సహీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకా అందమైన ఇంకొక కంఠస్వరం వినబడ్డది, వాళ్ళ కంఠం కూడా చాలా బాగుంది, వాళ్ళ శుభనామం తెలిస్తే వాళ్ళకు కూడా ఒక నమస్కారం చెప్తాను. రాధే రాధే.
3: చెప్పండి చెప్పండి.
5: నమస్కారం రాధే రాధే, నా పేరు శ్రియా. శ్రియా అండి.
4: శ్రియా గారు బాగుందా?
3: హలో
4: హలో, శ్రియా గారు బాగున్నారా?
5: బాగున్నానండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు?
4: ఎక్సలెంట్ గా ఉన్నానండి. బాగుండండి, చాలా బాగుండండి మీరు. అయితే ప్రీతి గారు, ప్రీతిజీ
3: బతాయి,
4: आप जो टॉपिक लिए है, मैं तो यही सोचता हूँ कि अपने भौतिक देह है ना, उसके अंदर अपना आत्मा से और वो देह को वो रिलेशन अगर अपन सही लगा लिए, पूरा पूरा पृथ्वी का रिलेशन अपने साथ सही रहेगा।
3: बहुत
4: नहीं बस,
3: मतलब आज के टॉपिक को आपने एक आध्यात्मिक रुख दे दिया है मुरली जी, बहुत अच्छा लगा।
4: और एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको, एकदम दिल से थैंक्स कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। किस बारे में पूछिए आप
3: जी, बताइए।
4: मैं दृष्टि में हूँ, मेरे को बद्रीनाथ का दर्शन करा है, उसके वास्ते आपको थैंक यू।
3: मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा
4: लगा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।
3: थैंक यू थैंक यू मुरली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुरली जी डिफरेंटली एबल्ड हैं और हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे और उन्होंने आज के विषय पर बात की, और एक और कॉलर की ओर हम बढ़ना चाहेंगे इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें। हेलो रेनबो।
6: हेलो
3: नमस्कार। हेलो
6: हेलो आदाब
3: जी। नमस्कार, बताइए कौन बात कर रहे हैं?
6: मैं जीनत।
3: नमस्कार जीनत जी, कैसी हैं आप?
6: ठीक हूं, आप कैसे हैं?
3: ऊपर वाले का उपकार है, आपकी शुभकामनाएं हैं, बताइए।
6: मैं गाना गा रही हूं, सुनिए आप। ये दुनिया के बदल से रिश्ते ना जाने कैसे एक पल में बदल जाते
3: हैं,
6: ये दुनिया के बदलते रिश्ते।
3: बहुत अच्छी बात, बहुत जो है इन शॉर्ट आपने जो बताया है ना, बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो साथियों यहाँ पर हम मैसेजेस की और भी साइमल्टेनियसली बढ़ना चाहते हैं। मैसेज भेजा है अश्विन जी ने कोठी कुशाल मार्केट से, कह रहे हैं कि सभी को जय श्री कृष्णा, और कहते हैं आप आए बाहर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही कहते हैं कि गूगल पूरी दुनिया का रास्ता दिखा सकता है पर मनुष्य बनने का रास्ता सिर्फ धर्म शिक्षा और संस्कार ही दिखा सकता है। बहुत सही कहा आपने। और क्या कहते हैं, उदय किसी का अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे उदय होता है। धैर्य और तपस्या जिस इंसान में है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है, ऐसे आपका कहना है। बहुत सही कहा। और अंत में कहते हैं कि जिंदगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े, मस्त रहे।

0: स्वस्थ रहें। बहुत प्यारा मैसेज, बहुत प्यारा मैसेज। और क्या कह रहे हैं, जिंदगी का हर फैसला हमारा नहीं होता, कुछ फैसले वक्त और हालात पर भी छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी जाली मिल जाते हैं भाई। अब ये तो इंसानों पर निर्भर करता है। तो चलिए साथियों, यहाँ पर हम बढ़ते हैं एक विशेष जानकारी के लिए। स्टे ट्यून्ड।
1: FM Rainbow 101.9 FM Rainbow 101.9
2: మీ సొంతింటి కల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ హోమ్ లోన్ తో మీ సొంతింటి కల ఇప్పుడు మరింత సులభం. ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటు కేవలం 7.20%, సులభమైన ఈఎంఐలు ప్రతి లక్షకు కేవలం 679 రూపాయల నుంచి ప్రారంభం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఈ రోజే మీ సమీపంలో ఉన్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ను సంప్రదించండి. మీ సొంతింటి కలకు బలమైన ఆర్థిక తోడ్పాటు.
1: FM Rainbow 101.9
0: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow को ना 1.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि जिंदगी में रिश्ते होना ज्यादा आवश्यक है, रिश्तों में जिंदगी। तो इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं की ओर बढ़ते हैं इसी नम्र निवेदन के साथ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो। हरिओम हरिओम, विलास जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हम पूरी कोशिश करेंगे विलास जी, फिलहाल तो हम विषय पर बात करते हैं।
3: ठीक है, आज के विषय पर बात करेंगे
0: जी।
3: आज का जो विषय आपने कहा है कि रिश्ते यानी कि संबंध
0: जी हाँ,
3: या मित्रता या जुड़ाव, तो हम जिस समाज में रहते हैं तो इस समाज में हमारे संबंध अन्य व्यक्तियों से होना अनिवार्य है। हम अकेले या कुछ दो चार मित्रों की सहायता से हम जीवन जी नहीं सकते। तो जीवन जीना है, जीवन अच्छा जीना है, तो हमारे संबंध कई व्यक्तियों से होने चाहिए, हमारी मित्रता कई व्यक्तियों से होनी चाहिए, हमारा जुड़ाव भी कई व्यक्तियों से होना बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए अगर से हमारा संबंध है, हमारी मित्रता है, तो क्या होगा कि उसके कारण हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इसलिए कह रहा हूँ कि हम हमारे मित्र से जो घर में बात नहीं कर सकते, ऐसी बात हम हमारे मित्र से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: तो हमारा हृदय किसी के सामने अगर से पूर्ण रूप से खुला करना है तो वो एक मित्र ऐसा स्थान है जहाँ पर से हम कुछ बातें कह सकते हैं।
0: आपकी इसी बात पर एक बात कहती हूँ विलास जी, एक बात मुझे याद आ रही है कि यदि खोल लेते अपना दिल यारों के साथ, यदि खोल लेते अपना दिल यारों के साथ तो कभी उसे खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ।
3: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपको तो इसके लिए प्रमाण पत्र देना चाहिए कि तुरंत आप काव्य रचना भी कर देते हो।
0: धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।
3: आज की बात है, हम हमारे पोती को सुना रहे थे कि एक बार हमारा प्रवास यहाँ से पुणे हम कर रहे थे तो आमने सामने लोग बैठे हुए थे, सबसे चर्चा हो रही थी। तो चर्चा करने से हुआ ये कि उनके जो कोई संबंधी है जो भाग्यनगर में रहते हैं वो और हम परिचित थे।
0: बहुत अच्छी बात, मतलब देखिए वो पहचान भी वार्तालाप से।
3: इनके साथ भी हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो तात्पर्य क्या है, जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप अपना मन किसी के सामने खुला नहीं करेंगे, तब तक के आप अपने आप में खुलते ही रहेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: हाँ, जितना आप खुलकर बात करेंगे, जितना आप खुलकर के संबंध प्रस्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, उतना आनंद आपको मिलेगा।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने साझा की विलास जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और चाहते तो यही है कि बहुत और ज्यादा आपसे बात करें, परंतु स्टूडियोज की घड़ी हमें यहाँ से ज्यादा आगे जाने के लिए परमिशन नहीं दे रही है, इसलिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं आप ही में से आपकी फरमाइश एक प्यारे से गीत की और।

0: FM Rainbow 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि रिश्तों में जिंदगी होना ज्यादा जरूरी है या जिंदगी में रिश्ते, तो इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इसी नम्र निवेदन के साथ उनकी ओर बढ़ते हैं कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो,
2: गुड आफ्टरनून निशा जी। गुड आफ्टरनून,
1: हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी आफ्टरनून। मैं आरजे प्रीति बात कर रही हूँ।
2: मैं राजकुमार निजामबाद से बात कर रहा हूँ मैडम जी।
1: नमस्कार, नमस्कार राजकुमार जी।
2: मैडम जी, ये रिलेशन बॉन्डिंग कैसा रहना बोले तो कभी मिलजुल के रहना है। अपना काम पड़े तो ये बात करना, काम नहीं पड़े तो उसको बंद रखना नहीं चाहिए वैसा।
1: बिल्कुल, और उसे रिश्ते भी नहीं कहते हैं, उसे मतलब ही कहते हैं।
2: मतलब ही नहीं है मैडम जी।

0: స్టే ట్యూన్డ్.
1: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు, మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎనుమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
0: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.
2: तो साथियों आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि रिश्तों में जिंदगी होना ज्यादा जरूरी है, जिंदगी में रिश्ते. इस पर बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर शायद ये हमारे लास्ट कॉलर रहेंगे. देखते हैं उनका क्या कहना है. हेलो रेनबो, कॉलर की ओर बढ़ने से. जी
3: नमस्ते आरजे प्रीति जी.
2: नमस्कार नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल बात कर रहा हूं.
2: बस आपकी ये लाइन सुनने के लिए ही आपका नाम पूछना पड़ता है इकबाल जी. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना ये इंट्रोडक्शन दिया ऐसे. और इसी नम्र निवेदन के साथ आपसे मैं बात शुरू करती हूँ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो. हेलो.
3: जी हाँ जी हाँ, रिश्तों को निभाने के लिए, रिश्तों को हयात देना, रिश्ता निभाने के लिए आदमी हेल्पिंग नेचर होना और खुश अखलाक की बात करना. तो इंसान को जैसे रिश्ते कुछ बने बनाए मिल जाते हैं और कुछ रिश्ते बनाना पड़ता है. तो आदमी अपने किरदार से रहे नए रिश्ते जो बनाता है और पुराने रिश्तों को भी अच्छे किरदार से और हेल्पिंग नेचर से लेके चले दोनों को, तो इंसान को अशरफुल मखलूकात कहलाता है.
2: बहुत खूब, बहुत अच्छी बात,
3: जरूरी है.
2: बहुत सही बात आपने साझा की. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए. साथियों वैसे और भी कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर स्टूडियोज की घड़ी हमें यहाँ से ज्यादा आगे जाने के लिए परमिशन नहीं दे रही है. तो मैं जो भी हमारे साथ जुड़े उनकी बात हमारे से हो गई, बहुत अच्छी बात है. और जो जिनको हम ऑन एयर नहीं ले पाए उनसे हम क्षमा प्रार्थना करते हैं और अपने अगले शो में पुनः उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं. तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद. और हमारे साथ अगली आरजे ज्योतिर्मयी बिल्कुल आप सभी को लुभाने के लिए तैयार हैं इस प्यारे से गीत के बाद. जस्ट द वे यू आर.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Yes, welcome back, listeners. 5:43 in the studio. Clock me vintunaru Akashwani FM Rainbow 101.9. Rainbow to jeevitam, rangulamayam. So, yes, that's it for today. So, ee roju topics kani, paatlu kani, mee andariki baaga nachayi ani cheppesi anukuntunnanu. And, yes, that's it for today. So, andaru kuda happy ga undandi, rainbow vintu undandi. And this is Ajay Jyotirmayi signing off officially. Stay tuned.

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
0: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: Rainbow 101.9.
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अभी वक्त है प्रोग्राम नए रंग का। कुछ ही देर में आप समाप्त करेंगे प्रोग्राम नए रंग। फिलहाल स्टूडियोज की घड़ी में वक्त हुआ है 9:30 और 30 सेकेंड्स।

0: जिससे काम जल्द मुकम्मल हो जाता है। नए ख्यालात सामने आते हैं और बेहतर हल निकलते हैं। सीखने का मौका मिलता है। टीम के अरकान एक दूसरे के तजुर्बात से सीखते हैं। टीम वर्क की अमली मिसालों की अगर बात करें तो खेल का मैदान, चींटियों और शहद की मक्खियाँ और खुद हमारा इंसानी जिस्म है। खेल की दुनिया टीम वर्क की बेहतरीन मिसाल है। अगर एक टीम में दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हो लेकिन फील्डिंग और बॉलिंग खराब हो तो वो टीम मैच नहीं जीत सकती। जीत तभी मुमकिन होती है जब 11 खिलाड़ी अपने कप्तान की क़यादत में एक इकाई बनकर खेलते हैं। हमें टीम वर्क का बेहतरीन सबक छोटे छोटे जानवरों से मिलता है। शहद की मक्खियाँ मिलकर छत्ता बनाती है और हर मक्खी का अपना मखसूस काम होता है। इसी तरह चींटियाँ अपने से कई गुना वजनी खुराक मिलकर उठाती है, जो कि इत्तेहाद की अलामत है। हमारा जिस्म भी एक अजीम टीम की मानिंद है। दिल, दिमाग, हाथ और पांव सब अलग-अलग काम करते हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही है, इंसान को जिंदा रखना। अगर एक अजू भी काम छोड़ दे तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। टीम वर्क में पैदा होने वाले मसाइल या किसी गलत बात या फिर इख्तिलाफात का मुकाबला हमको दलील और हकायक के साथ करना चाहिए। टीम में अगर कोई ऐसी तजवीज़ दें जो आपको गलत लगे तो गुस्सा करने के बजाय हकायक पेश करें। जैसे कह दें कि आपका ख्याल अच्छा है लेकिन पिछली बार के नतायज के मुताबिक अगर हम इसे इस तरह करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं के बजाय हम का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी की बात को काटने के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें। आप गलत कह रहे हैं कहने के बजाय हमें इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए। पहले सुने फिर जवाब दे। किसी का अगर मुकाबला करना हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि पहले सामने वाले की पूरी बात सुने ताकि उसे लगे कि इसकी अहमियत है। जब वो बात मुकम्मल कर ले तो उसकी बात के मुस्बत पहलू की तारीफ करें, फिर अपनी राय पेश करें। मुख्तसर ये कि दुनिया की तमाम बड़ी कामयाबियाँ, चाहे वो चांद पर पहुँचना हो या कोई अजीम शान इमारत बनाना, सब टीम वर्क का ही नतीजा है। अगर हम भी तरक्की करना चाहते हैं तो हमें मैं के बजाय हम की सोच अपनानी होगी।
1: बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती अल्फाज आपने समाप्त किए प्रोग्राम हरफे ताबिंदा में। तहरीर और पेशकश थी फहमिदा फहमोश की। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि बेदारी कायनात सिलसिले के तहत हमारा मकसद ये होता है कि कायनात के जो निज़ाम हैं, जो तख्लीकात हैं अल्लाह ताला की दीगर, उनके ताल्लुक़ से हम कुछ मालूमात आप तक फराहम करें। इसी गर्ज़ को लेकर हम आगे बढ़े हैं और आज हमारे दरमियान डॉक्टर ताजुद्दीन खान साहब अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं माहौलियाती इन्हितात पर, यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर। तो आइए समाप्त करते हैं कि ये किस तरह से माहौलियाती तनाज़ुल जो है, माहौलियाती आलूदगी जो है, उससे मुतालिक हमें जानकारी फराहम करते हैं। समाप्त करें।
2: तरक्की और तवाज़ुन फितरत की खसूसियात हैं, लेकिन आज का इंसान इस हकीकत को भूल चुका है। जिंदगी और बका के लिए आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज माहौलियात की आलूदगी है, जिसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के नाम से आज पहचाना जाता है। माहौल की आलूदगी हमारी ही पैदा की हुई है। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे उसके जिम्मेदार हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। आइए जरा गौर करते हैं कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। पहली तो यह है कि हवा से फैलती हुई आलूदगी, पानी की आलूदगी, सौती आलूदगी यानी आवाज की आलूदगी, नमक की आलूदगी, गजा की आलूदगी, डिफॉरेस्टेशन के मसाइल, मौसम की इंतहाई शदीद किस्म की तब्दीलियां, इंसानों की रिहाइश के मसाइल और आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग और जमीन का जेर आब होने का खतरा। हवा से

फैलती हुई आलूदगी, हर रोज सड़कों पर बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तादाद हमारे लिए खतरनाक बीमारियों का सबब बन गई है। इनसे निकलने वाला धुआं मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसेस का मुरक्कब है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर गैसेस हैं। जब ये गैसेस हवा के साथ हमारे फेफड़ों में दाखिल होती हैं, तो निजामे तनफ्फुस मुतासर होता है। कसीर तादाद सांस की बीमारियों का शिकार होती है, जिसमें से एम्फसेमा, ब्रोंकाइटिस और आस्थमा काबिले जिक्र और काबिले तशवीश हैं। नीज ये जहरीली गैसेस हमारे फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ा देती हैं। हर साल तकरीबन 7 लाख अफराद अमेरिका में इन बीमारियों से मर रहे हैं। इसके अलावा इन गैसेस की वजह से स्मॉग बनता है। स्मॉग जो इन खतरनाक गैसेस और जमीन के करीब मौजूद निचली तह की ओजान, जिसे बैड ओजान कहा जाता है, उसका मुरक्कब है। इस स्मॉग से और गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों की आंखें मुतासिर होती हैं और वो सड़क के हादिसात का शिकार हो जाते हैं। सड़क के हादिसात की शरह बढ़ जाती है। पानी की आलूदगी, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और मिलों और तजुर्बा गाहों का जहरीला पानी समंदरों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से समंदरी मखलूक मुतासिर हो रही है और सी फूड आबी गिजा खाने वाले लोग बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। मछलियों की तादाद उनके मरने की वजह से कम होती जा रही है और रोजगार के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। शहरों में पानी की आलूदगी की वजह से लोग खै दस्त, पेचिश, टाइफाइड और दीगर तुफीली बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुलवस और आलूदा पानी के इस्तेमाल से जल्दी बीमारियों की शरह बढ़ने लगी है। नमक की आलूदगी, अमरीका और दीगर तरक्की याफ्ता शहरों में जब बर्फ गिरती है तो सारी सड़कें और राहदारियां बर्फ से ढक जाती हैं। इस बर्फ को पिघलाने के लिए हजारों टनों नमक इस बर्फ पर डाला जाता है, जिसके नतीजे में नमक पानी में घुलकर जेरे जमीन आबी जखीरों में पहुंच जाता है। इसका मुजिर नतीजा ये हो रहा है कि आबी गजा यानी मछलियां वगैरह बीमार हो रही हैं और इसके इस्तेमाल से हजारों अफराद कई किस्म के अमराज का शिकार हो रहे हैं। सौती आलूदगी यानी आवाज की आलूदगी, मोटर गाड़ियों, एम्पलीफाइड म्यूजिक, हवाई जहाज, बहरी जहाज और तामीराती कामों से निकलती हुई जोरों की आवाज आए दिन अनगिनत लोगों की समात को नुकसान पहुंचा रही है। लोग आसाबी बहरापन का शिकार हो रहे हैं और कई एक लोग बेख्वाबी और नफसियाती अमराज में मुब्तिला हैं। सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत। जमीन पर इंसान की सनअती सरगर्मियां और नित नए तजुर्बात मुख्तलिफ किस्म की जहरीली गैसेस को जन्म दे रही हैं, जिनमें क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFSs हैं। ये गैसेस गुड ओजोन लेयर की बर्बादी का सबब बन रही हैं, जिसके नतीजे में जमीन की गर्मी यानी आलमी हिद्दत बढ़ती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई जानदार जिंदा नहीं बचेगा। न सिर्फ यही बल्कि पोलार आइस कैप्स की बर्फ हर लम्हा पिघलती जा रही है, समंदरों की सतह बढ़ने लगी है, जमीन अपनी गर्मी के दखूल और खरोच का तवाजन खो रही है और वह दिन दूर नहीं जब सारा कुर्रा अर्ज यानी ये हमारी दुनिया समंदरों के पानी में डूब जाए। क्या हमने माहौलियात की इन तबाहकारियों से बचने की कोई तदबीर सोची है? अगर नहीं तो अभी सोचिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। एक अहम वजह और हमारी माहौल की आलूदगी का डिफॉरेस्टेशन है। जितने भी फॉरेस्ट यानी जंगलात हैं, इंसान अपने मफाद के लिए उसको काटता चले जा रहा है और उसको एक मुसत्ते सतह बनाने के चक्कर में और उससे फायदा उठाने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में सारे जंगलात जमीन से गायब होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि मौसम की इंतहाई किस्म की तब्दीलियां सामने आ रही हैं। कभी हद से ज्यादा सर्दी, कभी हद से ज्यादा गर्मी और कभी अनलिमिटेड यानी गैर महदूद तौर पर इलाकाई फ्लड्स, बाढ़ का आ जाना, ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान आज के बदलते हुए मौसम से एडजस्ट होना और उससे उसके साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल महसूस कर रहा है। न सिर्फ ये बल्कि ओजोन लेयर जब पतली हो गई है तो उसका गहरा असर हमारी जिल्द पर भी हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से जिल्द के कैंसर की तादाद बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ बहुत से नौजवानों में अपनी जिल्द की खराबियों को लेकर उनकी जमालियाती हिस मुतासर हो रही है और ये लोग अपनी जिल्द की बहा के लिए डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाते फिर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि जमीन के गायब होने से हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तामीर की वजह से लोग छोटे छोटे घरों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से कई किस्म की बीमारियां और कई किस्म के नफसियाती मसाइल सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसा इन्फेक्शन, एक ऐसा जरसुमा जिसे स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है, इसकी वजह से अगर किसी को तनफ्फुस की बीमारी हो जाए तो फिर इसके साथ उठने बैठने वालों को जब यह इन्फेक्शन होता है तो तकरीबन 2 हफ्तों के बाद उसमें से कम अज कम एक शख्स दिल की बीमारी का शिकार होता है। अगर जायजा लिया जाए तो दिल की बीमारी, जिसे रोमैटिक हार्ट डिसीज कहते हैं, ये उन लोगों में ज्यादा पाई

0: जाती है, जो छोटे छोटे घरों में एक साथ मिलकर सोने और एक साथ मिलकर उठने बैठने का इंतजाम करते हैं, जिनके पास वसी जगह नहीं होती। इसी तरह नफ्सियाती मसाइल अपनी जगह हैं, छोटी जगह की वजह से बार बार घरों में छोटे मोटे झगड़ों का सिलसिला चला रहता है, जिसकी वजह से आदमी हमेशा तनाव का शिकार और दबाव का शिकार रहता है। न सिर्फ ये, बल्कि वो गिज़ा जो मुलविस पानी से पकाई जाती है, इसके खाने से हमारे इस हिंदुस्तान में, जो एक तरक्की याफ्ता नहीं बल्कि तरक्की पजीर मुल्क कहला रहा है, ज़्यादातर बीमारियाँ आंतों की हैं, मैदे की हैं, जिसमें से पेचिश, खय दस्त वगैरह हैं। उसके साथ साथ छोटे छोटे अतफाल की अमवात की शरह बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है, छोटी छोटी सड़कों को शाहरा बनाने के लिए, जो उसके दोनों तरफ बड़े बड़े घने सायदार शजर होते हैं, उनको बड़ी बेदर्दी से काट रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि वो सारे पौधे, वो सारे दरख्त जो हमारी ख़ारिज शुदा कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन देती हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, सालिमों की तादाद जब हवा में बढ़ जाती है, तो इंसान तनफ्फुस के घुटन का शिकार हो जाता है। हमेशा उसके सर में दर्द, एक किस्म की चिड़चिड़ाहट और फैसला करने की कुव्वत कम होती जाती है, और उसके साथ साथ उसमें वो तमाम बीमारियां होती हैं जहां ऑक्सीजन पूरी तरह इंसान के खून के जसीमों में नहीं मिल सकती। न सिर्फ ये, बल्कि लोग ड्रग अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि स्लम एरियाज, छोटी छोटी बस्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। जहाँ पे स्लम एरियों का वजूद आ रहा है, वहाँ पे ड्रग अब्यूज़ भी, यानि नशावर चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। इन तमाम चीज़ों की वजह खुद इंसान है। बड़े बड़े लोग छोटी छोटी बस्तियों को काट कर वहाँ पर अपने अपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ा कर रहे हैं, और ये बेचारे शहरों को छोड़कर फिर छोटी छोटी बस्तियों के वजूद में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। छोटी छोटी बस्तियाँ या स्लम एरियाज का अपना एक अलग है। उसके अलावा बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग स्मोकिंग के आदि होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर के बढ़ने और दिल की बीमारियों और जहनत और मेमोरी यानी याददाश्त की कमी का शिकार होने की तमाम बीमारियाँ आबादी में बढ़ती जा रही हैं।
1: आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम नैरंग में बेदारी कायनात सिलसिले के तहत, तकरीर उनवान था माहौलियाती इन्हेतात एनवायरमेंटल डिग्रेशन। तहरीर और पेशकश थी जनाब ताजुद्दीन, डॉक्टर ताजुद्दीन खां की। सामाइन, वक्त भी आगे बढ़ा है और एक के बाद दीगर पेशकश भी आपके सामने पेश की जा रही है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी मालूमात में भी इजाफा हो और साथ में आपको पूरा पूरा हिस्स भी हासिल हो। इसी कोशिश के तहत हमने सजाया है हमारे इस शो का, हमारे इस प्रोग्राम की अगली पेशकश को, यानी कि प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। दोस्तों, जब गीतों की बात होती है तो दिल बेकाबू हो ही जाता है, दिल में एक उमंग सी दौड़ने लगती है, क्योंकि मौसीकी, संगीत या म्यूज़िक हमारी ज़िंदगी को एक नया रंग देता है, और गीत और गीत के बोल गोया हमारे दिल की दास्तां को बयां करने लगते हैं। इसीलिए तो हर शाम या हर रात हम आपके हिस के लिए आपके ख्यालात को एक बहुत ही खूबसूरत पैराए में ढालने के लिए सजा लाते हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। तो चलिए सुरीले गीत गाते गाते, सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम का सबसे पहला गीत मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ, एक बहुत ही ख़ास भी है, बहुत ही प्यारा सा भी है और बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी है, क्योंकि दोस्तों जब बात होती है साथ की और वक्त को रंगीन बनाने की या ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की, तो कोई ऐसा साथ ज़रूरी होता है जो हमारी ज़िंदगी को रंगीन बना दे या ज़िंदगी को सहारा दे दे। बहरहाल आइए आपको लिए चलते हैं गीतों के इस प्यारे से सफ़र पर।

दोस्तों, किशोर कुमार जी की आवाज़ में आपने ये दर्द भरा मशहूर नगमा अभी सुना। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी में एक साथ ही ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें अधूरा महसूस होने से बचाती है, अपने आप को अधूरा महसूस करने से बचाती है। बिना किसी के साथ की ज़िंदगी तन्हा गुजारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी न किसी साथी की हमें ज़रूरत ज़रूर दरकार है, और वो कोई साथी जो कि आपका अजीज़ है, जिसने आपको इस बात का एहसास दिलाया है कि ज़िंदगी की इस डगर पर जब वो आपके साथ है तो आप हर मुश्किल रास्ते को बआसानी पार कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा साथी आपके साथ हो तो बस जीने का मज़ा ही आ जाता है। लेकिन अगर वो साथी अगर आपसे दूर होने का आपको खौफ हो तो ज़िंदगी वबाल बन जाती है। कुछ इसी तरह के जज्बात हमने इस गीत में सुने हैं और महसूस किए हैं। वाकई में जो हमारे सच्चे साथी होते हैं, उनके बगैर ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। दुआ यही है कि हमारे साथियों के साथ, आपके हमारे साथियों के साथ, हमारा प्यारा सा साथ हमेशा हमेशा हमारी ता हयात, यानी कि जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक बना रहे, और हम अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना करें। हाँ, तो इसी तरह के इजहार और इसी तरह के ख्यालात के एहसास के लिए हमने आज का उन्वान चुना है साथ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा उन्वान है, और इस उन्वान के तहत हम आज आपको कुछ चुनिंदा नगमे सुनाएंगे। तो आइए अपना रुख करते हैं प्रोग्राम के अगले गीत की जानिब। सुनते हैं कि इस गीत में साथी के बगैर जीना किस कदर दुश्वार नज़र आता है। लीजिए, सुनिए ये गीत।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत नगमा आपने सुना आया सावन झूम के मूवी से। आवाज़ें थी लता जी की और मोहम्मद रफ़ी जी की, और इस कदर सुपरहिट गीत को आपने सुना। और इस गीत के सुनने के बाद सच में इस बात का अंदाज़ा तो हुआ है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमारा साथी होता है उसका साथ सबसे प्यारा होता है, और उसके बिना जी तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और दुनिया वाले इस सांस से जलते ज़रूर हैं। खैर, चलिए, आशिक अपने अपने ख्याल इस अलग अलग तरह से बयां करते हैं, हम भी अपने ख्यालात ज़रूर बयान करेंगे। ये सिलसिला चलते रहेगा प्रोग्राम का बराबर, लेकिन अभी हम चलते हैं एक छोटे से वक्फे पर। वक्फे के बाद फिर से ये सिलसिला जारी रहेगा।
1: FM Rainbow 101.9.

दोस्तों, फिल्म वापस से लिया गया ये गीत आपने सुना, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गीत सुरीले गाता जा, और हमारी आज की बातचीत हो रही है साथ पर। जी हाँ, ये साथ ही है आपका और हमारा जो कि हमको बांधे हुए है एक डोर में। जी हाँ, तो साथ जो है रिश्तों को बांधता भी है और रिश्तों को खरीब करता है, और हमें ये एहसास दिलाता है कि रिश्ते हमारी ज़िंदगी में किस हद तक ज़रूरी हैं, क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल, साथ पर हम जितना कुछ कहें उतना कम है। साथ, जब साथिया का हमारे साथ होता है तो बस बात ही बन जाती है और जीने का मज़ा आ जाता है और दिल कुछ यूं गुनगुनाने लगता है।

दोस्तों, छोटे से वक्फे के बाद हम फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ स्टूडियो की घड़ी में। 10:30 हुआ चाहते हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा लिए हुए। गीतों का खूबसूरत सिलसिला आगे बढ़ रहा है और आप हमारे साथ साथ हैं, हम आपके संग संग हैं और संग संग साथ साथ हम कुछ इसी उन्वान पर गीत आपको सुना रहे हैं। तो आइए ये सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत सुनने के लिए।

दोस्तों, उदित नारायण और महालक्ष्मी जी की आवाज़ों में आपने ये खूबसूरत गीत सुना, फलक तक चल साथ मेरे। जब किसी का साथ होता है, वो अपने महबूब का, वो अपने साथी का, वो अपने बिलव का, वो अपने प्यारे से दोस्त का, हम सफ़र का साथ होता है, तो ये दुनिया तो छोटी ही पड़ जाती है। जी चाहता है कि फलक तक भी हम, यानी कि आसमान तक भी हम उसी के साथ चले जाएं। कितना खूबसूरत होता है ना ये साथ, कि हम ज़मीन तो ज़मीन, आसमानों की सैर के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ना कोई घबराहट, ना कोई हिचकिचाहट, ना किसी तरह का कोई खौफ। जब इंसान किसी के साथ में किसी तरह का कोई खौफ महसूस नहीं करता, बल्कि खुशी महसूस करता है, तो वही हकीकतन सच्चा साथ होता है। तो चलिए, साथ निभाने के लोग के लिए लोग हजार बातें करते हैं, हजार बातें करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन साथ के

हकीकता निभाया जाता है या सिर्फ ये वादे ही किए जाते हैं। आइए सुनते हैं हमारे इस प्रोग्राम के अगले गीत में, लीजिए सुनिए।

तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। अब वाह, क्या खूबसूरत गीत था! और खूबसूरत क्यों न रहे, आवाज़ ही इस कदर खूबसूरत है कि महेंद्र कपूर जी की एक अनोखी आवाज़, इसका जादू ही कुछ और था, इसमें सुकून ही कुछ और था। और फिल्म थी हमराज, BR चोपड़ा जी की ब्लॉक बस्टर फिल्म। और इस गीत के खास तौर पर जो बोल थे वो लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने। तो इस कदर खूबसूरत बोल, खूबसूरत गीत, म्यूजिक एंड और बहुत सारी चीज़ें, इस कदर खूबसूरत खूबसूरती को एक जगह जमा कर दिया जाए। और खूबसूरत अदाकार और अदाकारा भी, यानी कि सुनील दत्त जी और विमी जी। तो इस तरह जब कोई गाना कंपोज किया जाता है इस कदर खूबसूरती के साथ, तो उस गाने का क्या कहना कि हर दौर में ये खूबसूरती अपनी बिखेरता ही रहता है। वैसे खूबसूरती हम भी बिखेरना चाहते हैं लफ्ज़ों के ज़रिए आप सभी के चेहरों पर। जी हाँ, तो खूबसूरती के साथ मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए। और आगे बढ़ते हैं हमारे फिल्मी गीतों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गीत सुरीले गाता जा। चलिए एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

जी हाँ दोस्तों, साथ साथ आपके चलना तो ज़रूर है, लेकिन अब वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इस सिलसिले को हम यूं ही कायम और दायम रखें। हमें आपसे इजाज़त लेना ही है। अब इजाज़त लेने का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन इससे पहले हमारे प्रोग्राम की एक और पेशकश बाकी है जिसका नाम है पयाम-ए-शब। आइए समाप्त करते हैं।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। कुछ ही देर में रात के 11 बजने ही वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपए मिलेंगे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu.

0: गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। 11:11 और 4 सेकंड हो चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं गीत मेरे मनमीत की, राजेश रोशन के संगीत के साथ। लता मंगेशकर की आवाज है, साथ है अमित कुमार का, फिल्म का नाम है बातों बातों में। इसके बाद अगला गीत आप सुनेंगे आर डी बर्मन का संगीत है और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत होगा, आशा जी की आवाज है, साथ है मोहम्मद रफी का, पद्मनी कोल्हापुरी का और ऋषि कपूर का। तो समझ गए ना, जी हाँ, फिल्म का नाम है जमाने को दिखाना है। तो बैक टू बैक इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। 11:11 और 44 सेकंड हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।
1: सबके कदम देखो रम पम पम

वक्त मिला ले 11:22 और 20 सेकंड हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz, गीत मेरे मनमीत आप सुन रहे हैं। अगला गीत है आशा जी की आवाज में, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, फिल्म का नाम है डॉन। और इसके बाद होगा कारवां फिल्म से गीत, लता जी की आवाज है और एक बार फिर से आर डी बर्मन का संगीत है। और आज गीत मेरे मनमीत में आपके संग है अर्पणा।

गीत मेरे मनमीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11:32 और 40 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत आप सुनेंगे आर डी बर्मन का ही संगीत है और आर डी बर्मन की ही आवाज है। फिल्म शोले से गीत होगा और इसके बाद बप्पी लहरी के संगीत से सजा हुआ गीत होगा और फिल्म का नाम है डिस्को डांसर। बैक टू बैक इन दो गीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर। आज आपके संग है अर्पना और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।

11:56 हो चुके हैं। ये गीतों का जादू छाया रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा आरडी बर्मन का संगीत होगा, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में, फिल्म हम किसी से कम नहीं। और इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनिएगा समाचार। गीत मेरे मनमीत से अर्पणा को दे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़

0: रेट है 10.25% के लिए, किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए, करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपने प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ के निराला उपस्थित थे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरलम और माहे में तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:11 और 10 सेकेंड। निशिगंधा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ के साथ।

कभी कभी ना चेहरे का जादू सच में कोई जादू नहीं होता, बस हमारी नजर का धोखा होता है। मतलब सामने वाला वही होता है पर हम उसे ज्यादा खास बना देते हैं अपनी सोच से या फिर अपने प्यार से। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब वही चेहरा होता है जो जादू लगता है, बिल्कुल साधारण वही चेहरा जो हमें पहले जादू सा लगता था बिल्कुल साधारण सा लगने लगता है। होता है आपके साथ ऐसा? अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

ये गाना सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी जिंदगी थोड़ा स्लो मोशन में चलने लगी है। ना कोई भाग दौड़ है, ना कोई टेंशन लग रही है, बस बारिश है, आपका साथ है और साथ में है कुछ प्यारे प्यारे गाने। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

एक के बाद दो आता है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, और बहुत गिनने के बाद शायद अनंत आता होगा। पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे बाद क्या आता है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:34 और 25 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। मेरी

वैसे मेरा नाम तो मंजू है और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। रात का समा है, चांदनी रात है और ऐसे में दिल अक्सर थोड़ा सा शायर हो ही जाता है। और जब दिल शायर हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर होती हैं बहुत सारी बातें, पर बातें वही रहती हैं, लफ्ज़ बदल जाते हैं। अगला गीत अभी के लिए।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 12:50 और 30 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा।

ये तो सच बात है कि जब भी हम आपसे बातें करते हैं, आपसे जुड़ते हैं, तो लाखों ख्वाब निगाहों में सिमट कर आ जाते हैं, और उन लाखों ख्वाबों में सारे जो ख्वाब होते हैं वो खुशियों वाले हों ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। उसमें से कुछ उदासी वाले भी होते हैं, मायूसी वाले भी होते हैं। तो थोड़ी सी बात रियलिटी की भी कर ली जाए। किसी भी इमोशन का असर हमारे दिलो दिमाग पर तब पड़ता है, तब तक ही पड़ता है जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्या हो अगर हम उसे एक्सेप्ट ही ना करें? शायद हम पर कोई असर ही नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव थॉट एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो इसका मतलब हुआ कि हम कभी उदासी नहीं होंगे। मैं ऐसे ही थोड़ी कहती हूँ कि मुस्कुराओ, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं, और जब आप अपने साथ सबसे ज़्यादा होते हैं तो फिर मेरे साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी

0: है 10.25% के लिए, किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी।

0: ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट दो प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल है। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपनी प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। नीति आयोग ने सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में शासन को मजबूत करना, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है। पोर्टल का शुभारंभ नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने किया। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity Kapas Kranti with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with the semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crores.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 12 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रफी साहब की आवाज़ के साथ।

रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद, संगीत था रवि का और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहम्मद सादिक ने, निर्माण किया था गुरुदत्त साहब ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी गुरुदत्त, वहीदा रहमान और रहमान ने। 1959 की फिल्म कागज़ के फूल की असफलता के बाद ये फिल्म गुरुदत्त साहब के लिए कामयाब फिल्म रही थी और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये फिल्म। अब सुनवाते हैं आपको अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, संगीत शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। ये फिल्म 1960 में प्रदर्शित हुई थी और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण किया था एस ए बागर ने और इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया था किशोर साहू ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा ने। इस फिल्म की कहानी एक सर्जन के इर्द गिर्द घूमती है और ये फिल्म जो है वो

अभिनेत्री मीना कुमार के करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अब हम सुनवाते हैं अगला गीत रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

नील कमल फिल्म से रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। संगीत था रवि का और ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी 1968 में और इस फिल्म में वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार और ललिता पवार मुख्य भूमिका में थे। और अब सुनवाते हैं आपको अगला गीत रफ़ी साहब और आयशा जी की आवाज़ में, फिल्म तुमसा नहीं देखा।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

वक्त हुआ है 1:51 और 30 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी

0: कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी मिली है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट दो प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल

0: हुआ है SSPL का, सुची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
1: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन SIS से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये आरोपी सार्वजनिक जगहों पर रायसिन नाम के खतरनाक जहर से लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वाशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट यूएसए निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उस पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान ने इन घटनाओं में किसी भी भूमिका से सख्ती से इनकार किया है। ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और हॉर्मूज जल डमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अमरीका का प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान जारी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity Kapas Kranti with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre to factory to fashion to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved 2 more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet also approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs

इतनी हसीन, इतनी जवान रात क्या करें, इतनी हसीन, इतनी जवान रात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, पेड़ों के बाजुओं में महकती है चांदनी।

बेचैन हो रहे हैं ख्यालात, क्या करें। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ, क्या करें। शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके। हैरान है कि आज नई बात, क्या करें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 42 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ।

इश्क में ऐसा ही होता है, दिल घर बन जाता है और आंखें संसार। इश्क में कभी कभी पागलपन भी बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ये पागलपन इस गाने तक पहुंच जाए तो फिर सोने पर सुहागा। फिलहाल तो कार्यक्रम और इस पागलपन को, दोनों को आगे बढ़ाने का टाइम है, और सुनते हैं अगला गीत मुकेश, और मुकेश की आवाज़ में।

और मुझे लगता है पूछना चाहिए, क्योंकि पूछने और बताने से दर्द कम हो जाता है। जब बात दीवानगी की चली है तो ये गाना सुनना तो बनता है।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

0: बाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मूठे
0: इसके दांत तो देखो।

0: किसी से छुपकर ये भी मिलता है। मैं नाम बताऊं
1: ना ना ना ना ना जी
0: तस्वीर बताऊं

फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की जबां में बोल कभी। फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की जबां में बोल कभी। अल्फाज परखता रहता है आवाज हमारी तोल कभी। अनमोल नहीं लेकिन फिर भी, पूछ तो मुफ्त का मोल कभी। खिड़की में कटी हैं सब रातें, कुछ चौरस थी कुछ गोल कभी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र बंजू। वक्त हुआ है 2:34 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: मुझे लगता है प्यार अगर पूरा है तो फिर पल भर का ही काफी है। एक पल बगैर देखे उसे क्या गुजर गया, एक पल बगैर देखे उसे क्या गुजर गया, ऐसे लगा कि एक जमाना गुजर गया। प्यार को संगीत में सुना है आपने कभी? आइए अगला गीत सुनाते हैं आपको, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, किशोर कुमार की आवाज में।
1: हंसो मत, बोलो।

ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। वक्त हुआ है 2:51 और 13 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दे दी है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड।

0: ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
1: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1,10,000,000,000 के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट यूएसए निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। वहीं अमरीका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा है कि भारत और अमरीका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बहुत करीब हैं। उन्होंने बताया के समझौते के अंतर्गत दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 6 दिन की यात्रा पर ताइवान पहुंचा। ये यात्रा 9 मई तक चलेगी। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टियों के युवा नेता शामिल है। मंत्रालय ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि अपने यात्रा के दौरान ये नेता ताइवान की सरकारी एजेंसियों से मुलाकात करेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 15 वर्ग में नोंग पोंग गनबा मेईती पारशांत मोहम्मद ने अपने बेहतरीन जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations as also on regional and global issues of mutual interest. The President of Vietnam arrived in New Delhi on a 3-day visit to India yesterday. He was received by Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government of Vietnam. This is President Tho Lam's first state visit to India after being elected as the President of Vietnam in April this year. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity Kapas Kranti with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre to factory to fashion to foreign, and focuses on enhancing cotton productivity. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved 2 more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet also approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4. from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

सुना तुझे देखा तुझे चाहा। नजदीकियां भी रखें और कुछ फासले भी रखें, नजदीकियां भी रखें और कुछ फासले भी रखें, हर रिश्ते में नजदीकियों और फासलों का सामंजस्य बनाए भी रखें, पर जब भी लिखे दिखें लड़ने के आसार, पर जब भी दिखे लड़ने के आसार, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। 3:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। कभी कभी हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसान होता ही है जिसके बिना हमारा दिल अक्सर नहीं लगता है। कोई हो या ना हो मेरे पास, कोई हो या ना हो मेरे पास, पर ये रात तो है मेरे साथ। दिन में बहुत शोर है, दिन में बहुत शोर है, पर ये रात है बहुत ही शांत। हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, सिर्फ ये रात है जो मुझे सुनती है तसल्ली के साथ। बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, वो बात भी कर लेता हूँ इस रात के साथ, क्योंकि ये रात है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। और आप जुड़े रहिए अपने दोस्त अर्चित के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

3:31 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

इस कदर हम थे तन्हा, इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, और लोग समझते हैं हम आज भी तन्हा हैं। 3:38 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

0: कोई भी इंसान हमें अच्छा या बुरा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही लगता है। हमें ज़रूरत है तो वही हमारे लिए बहुत अच्छा, और हमें ज़रूरत ना हो तो वही हमारे लिए बुरा हो जाता है। क्योंकि सूरज हमेशा वही रहता है जो सर्दियों में तो हमें बहुत अच्छा और गर्मियों में हमें उतना अच्छा नहीं लगता। 3:44 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: आज की रात कभी

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। किसी की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। हासिल हो जाए फिर कहाँ उसकी कोई कीमत होती है। हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए, हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए। जो आपको मिला है उसकी कीमत किसी के लिए आज भी बहुत होती है। 3:56 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दे दी।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम

में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है।

पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया इस समय तेजी से बदल रही है और कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और नई तकनीकों के कारण हालात जटिल हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1,10,00,000,000 के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट यूएसए निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 15 वर्ग में नोंग पोंगनबा मेईती, पारशांत, मोहम्मद यासिर और निवेश पाल ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। रणवीर को वॉक ओवर से जीत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 4:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

आशा भोसले जी की आवाज में जिंदगी इत्तेफाक है। ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, मिली जब मंजिल तो पता चला असली सफर तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो सिर्फ भटक ही रहे थे। 4:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में गीत तेरे साज का। छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना अब सीख लीजिए। किसी बड़ी खुशी का इंतजार अब ना कीजिए। कोई बड़ा गम नहीं है, इसी बात की खुशी मनाइए। गम है दुनिया में कितने हैं गमगीन, यहाँ पर विश्वास ना हो तो किसी से भी पूछ लीजिए। 4:25 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

किशोर कुमार जी की आवाज़ में दूरियां नज़दीकियां बन गईं। 4:30 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं कुछ और प्यारे प्यारे से गीत।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखें। जाना खुद ही पड़ेगा चलकर आपको, जाना खुद ही पड़ेगा चलकर आपको, रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 4:36 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

किशोर कुमार जी की आवाज़ में अभी अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना जिसके बोल हैं, कोरा कागज़ था ये मन मेरा।

मुकेश जी की आवाज में चल अकेला। हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर गमों की चर्चा क्यों करते हो। हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर गमों की चर्चा क्यों करते हो। बैठे तो हो सुकून से घर में, फिर इतना परेशान क्यों लगते हो। परेशानियां तो होती ही हैं सभी के पास दो चार, परेशानियां तो होती हैं सभी के पास ही दो चार, पर तुम हर समय इतना परेशान क्यों दिखते हो। 4:49 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा, मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज़ में दिल ने दिल को पुकारा। 4:54 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन, इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह की 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता

बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कथित बयान पर कि वे इस्तीफा नहीं देंगी, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन टिप्पणियों को अराजक बताया और इस तरह के बयान देने में संयम बरतने का आग्रह किया। वहीं केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ

वे इस्तीफा नहीं देंगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन टिप्पणियों को अराजक बताया और इस तरह के बयान देने में संयम बरतने का आग्रह किया। वहीं केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणना क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:11 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

जन्म जन्म का साथ है। जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए, जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए, निराशा के साथ जागे तो पूरा दिन निराश ही रह जाएंगे। उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, कभी न कभी सफल जरूर हो जाएंगे। 5:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

किशोर कुमार जी की आवाज में ये दुनिया वाले पूछेंगे। किसी होनहार प्रतिभावान व्यक्ति से जुड़ना है तो उसके शुरुआती दौर में ही जुड़ जाइए। किसी होनहार प्रतिभावान व्यक्ति से जुड़ना है तो उसके शुरुआती दौर में ही जुड़ जाइए, उसके सफलता के शिखर पर पहुंचने का इंतजार ना करें, क्योंकि आप उगते हुए सूरज से तो नजरें मिला सकते हैं पर दोपहर के तेज सूरज से नहीं। 5:22 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

निकलोगे बाहर तो कुछ मुश्किलें तो उठाओगे, निकलोगे बाहर तो कुछ मुश्किलें तो उठाओगे, घर पर बैठे सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ पाओगे। दो चार कदम चलकर तो सभी थक जाते हैं यहाँ पर, दो चार कदम चलकर तो सभी थक जाते हैं यहाँ पर, लगातार चलते रहो, एक न एक दिन मंजिल पर पहुँच ही जाओगे। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी